अनंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अनंत के आगे बेअनंत है। अनंत होने से पहले बेअनंत को जान लो तो फिर अगले वाले अनंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअनंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अप

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 2 जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोफोरी।

0: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। फौजी भाइयों के लिए पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम जरा याद करो कुर्बानी।
1: जो

दोस्तों, इस कार्यक्रम के पिछले भाग में कुछ फौजी भाइयों का अनुरोध था कि हम अपनी बटालियन में, अपनी यूनिट में फौजियों की मर्दाना आवाजें तो सुनते रहते हैं, अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारी जो महिलाओं की आवाज सुनने की इच्छा है ना, वो पूरी हो सके। तो उनके अनुरोध को सिर माथे पर रखते हुए इस बार हमने कार्यक्रम में सभी गीत महिला गायिकाओं द्वारा ही गाए गए हैं, वो रखे हैं। फौजी भाइयों, जब आप सरहदों पर जाते हो तो सच में सर पर कफन बांध कर जाते हो, और कई बार कुछ फौजी भाई वहीं शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम इतिहास से मिट जाता हो, अरे वो तो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आने वाली नस्लों तक में उनकी हस्ती की खुशबू सदियों तक महकती रहती है, और फिजाओं में उनकी रूह की आवाज़ गूंजती रहती है और कहती है।

आपके लिए फौजी भाइयों मौसम तो कोई मायने ही नहीं रखता। गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम, आप अपने कर्तव्य को लेकर हर पल डटे रहते हैं। आपकी मौजूदगी से जहां दुश्मन के प्राण सूख जाते हैं ना, वहीं आपके अपने किसी खुशगवार मौसम में परवरदिगार से दुआ कर रहे होते हैं कि

लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको तो बस अपने वतन की मिट्टी से किया गया वायदा ही याद रहता है, और आप उनको भी याद दिला देते हैं कि तुम्हारे बिना तो चल जाएगा लेकिन वतन के बिना नहीं चलेगा। आप तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि हमें कोई शिकवा नहीं है तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी, और उनकी जो बात होती है ना वो मन की बात मन ही मन में रह जाती है, और हार कर उनको भी यही कहना पड़ता है कि

भाई आपने तो कहकर दिल हल्का कर लिया, अब उनका क्या कहें जिनकी दुनिया ही आप हो, जिन्होंने दिल के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखा है। वो जमाने से शिकायत करते हैं कि हमने दिल ही क्यों लगाया, लेकिन फौजी भाइयों उनके त्याग और समर्पण को भी अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। ऊपर वाले से बार बार पूछते हैं कि ऊपर वाले हमारे इस सवाल का जवाब तो दे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। खैर, वक्त आने पर छुट्टी की अर्जी भी मंजूर हो जाती है, और जब पता लगता है ना कि अब छुट्टी पर जाना है, तब आपका मन भी बच्चों से फुदकने लगता है। मिलन और जुदाई, इन दोनों के बीच का जो वक्त है ना, वो काटने से भी नहीं कटता। यूनिट से घर तक का सफर ऐसा लगता है हजारों मील का हो गया हो। एक एक पल पहाड़ सा महसूस होता है। दिल कहता है कि काश

छुट्टी पर आने के बाद काम तो बहुत से होते हैं भाई, घर की मरम्मत करवानी है, बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, और गुड़िया के लिए रिश्ता भी तलाश करना है। भागदौड़ में तेजी से समय गुजरने लगता है। बड़ी मुश्किल से मौका निकाल कर कुछ पल जो उनके पास बैठते हैं ना, तो उनका कहना होता है कि

लेकिन आप तो अपने दायित्व को भली भांति जानते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बहुत से काम रह भी जाते हैं। आप अपने दिल को दिलासा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब छुट्टी पर आऊंगा तो बाकी के काम कर लूंगा। आपने तो दिल को समझा लिया, लेकिन वो क्या करें जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और जिनको पहलू में बैठकर कंधे पर सर रखने तक का मौका नहीं मिला। उनकी जुबान चुप रहती है, पर जानते हैं दिल का कह रहा होता है, उनका दिल उनकी जुबान से कह रहा होता है कि

आप उनको भी समझाते हो कि पगली कोई बात नहीं, नौकरी है, इस तरह जिंदगी चलती है, मिलजुल कर ही गुजारा होता है, कोई घर संभाल लेता है तो कोई सरहद, हम दोनों मिलकर ही गृहस्थी का पहिया चलाते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे जीवन में एक दिया है, एक बाती है, और हमारा वतन हमारा तेल है। अरे इसी को तो जिंदगी कहते हैं, इसीलिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। और मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भर के रेत की हवा में उछाल दी।

0: और देखते ही देखते छुट्टी के दिन हवा के झोंकों की तरह निकल जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं गीतों के साथ साथ आपका मनोरंजन तो करूं ही, साथ ही आपके और उनके दिलों पर दस्तक दे सकूं और वो बातें करूं और सुनाऊं जो सच में आपके साथ बीतती हैं। आपका दिल जिन बातों को किसी को बता नहीं पाता। खैर, धीरे धीरे आपका वापस जाने का वक्त भी आने लगता है। अब तो समय भी बैरी हो जाता है। नमुआ किस तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। अब तो वो भी हल्की जुबान से कहने लगे हैं कि हमें भी ले चलिए ना, वहीं पर हम क्वार्टर लेकर रह लेंगे। कम से कम सरहद पर ना सही, घर पर रूम पर तो आपका साथ दे ही सकते हैं ना। और वो बार बार कहते हैं
1: उस पथ

ओहो, मैं बातों की रवानगी में ना वक्त की बंदिशों को ही भूल गया। आपकी भावनाओं ने मुझे भी अपने साथ बहा लिया। मैंने भी बहुत कुछ कहना था, चलो कोई बात नहीं, फिर सही। अब अपने रेडियो हम सफर मेरे शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम के अगले भाग में। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है, ये कैसा लगता है? हमें हमारे नंबर 7056413010 एक बार पुनः आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056413010 पर जरूर बताएं। और तब तक के लिए तो नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए, एपिसोड 2, जरा याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शिवानी और लेके आई हूं आपके लिए एक कहानी। कहानी का शीर्षक है हाथ और साथ। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना अब बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पति देव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है, सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा था, वह भी बीमारी के भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूँ, जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ आप किस हाल में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी पोंछ नहीं सकती। आप अकेले में जब रोते हैं तो छुपकर देखती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी भी हमें किस मोड़ पे ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? इधर मैं नहीं चाहती आप कमजोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूँ मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद मैं अब एक दो दिन के मेहमान हूँ, शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है कि आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना, जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे बुलाना। 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हो। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है, हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ। मगर आप हिम्मत मत हारना, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी ही लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूँ, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लगी हुई है, बुलाना बहुत मुश्किल है, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूँगी, टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब मैं न रहूंगी, अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की चिंताओं से मुक्त थे, दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, अब रोटना छोड़ देना, क्योंकि अब आपको मनाने के लिए आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। ऐ जिंदगी, तेरे सफर में इतने गम क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी तो बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? ऐ जिंदगी, अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ।

फिल्मी गीतों पे मबनी प्रोग्राम पेश है। धीरे धीरे अब ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम इन बादलों में कहीं खो सा गया है। मैं हूं रमेश मराठा, नमस्ते।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गए, खामोश हो गए, फना हो गए, भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

सी आहट होती है तो दिल कहता है, कहीं वो तो नहीं। इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे, पिछले मौसम की तरह।

शिव को मत्र करती है। बस तुम्हारी आवाज सुनते ही और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आती हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

यूं ही तन्हा तन्हा साथी थे पर छूट गए, अब ये रह गुजर भी है हमारी ही तरह तन्हा तन्हा। बस हम तलाशते हैं वो साथी जो कभी हमारे अपने थे, सिर्फ

काश तुम रोक लेती हमें चंद पलों के लिए, मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देती, मुझे सहलाते, मुझसे प्यार करते, मुझे अपनी बाहों में लेती, मेरा हाथ थामती। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करते, मुझे अपना समझते, मगर ये हो न सका, ये हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। सहयोग राहुल अलियान का। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों के महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

फरिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

0: अगर हाथ उठने लगे छून पाए ना सी।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

अरे वाह अरे वाह अरे वाह वाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे मा और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे मा। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

फिल्म गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

सी लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक, इन मौसमों के गुम हो जाने तक, कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर घर

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 16, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सचेतनता और ध्यान। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वायु अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।
1: तेरा हर कदम जो।
2: नमस्कार, आदाब एंड हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू होंगे हम दो बहुत स्पेशल होस्ट से, मैं लक्ष्मी और भरत दत्तू।
0: हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देती है बल्कि साथ ही आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का पूरा कार्य बखूबी निभाते हैं। इस कार्यक्रम सीरीज एपिसोड्स में हम आपको बहुत सी जानकारियां बुजुर्गों की जरूरतों से जुड़ी हुई मुहैया कराते हैं, चाहे तो वो सेहत से जुड़ी हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार की बात हो या फिर उनका सहारा।
2: हर एक रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन द्वारा ये पहल सभी बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने को लेकर की जा रही है। आज का समय बदल चुका है, बहुत से घरों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, ऐसे में उनका साथ कोई नहीं दे पाता। बच्चे बाहर रहते हैं और वो पूर्ण रूप से किसी न किसी बाहर वाले पर निर्भर हो जाते हैं।
0: परंतु हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एक ऐसा कार्यक्रम है जो बुजुर्गों का सहारा बनकर सामने आ रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सभी सीनियर सिटीजन्स तक ला रहा है वो जानकारी जो होती है उनके जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ी हुई।
2: इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, केयर गिवर्स की सही ट्रेनिंग, सेज वयोश्री योजना के साथ साथ मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी व समाधान, और साथ ही बुजुर्गों की सही खान पान व डाइट से जुड़ी जानकारी व एक्सपर्ट्स की एडवाइस व मंत्रालय द्वारा दे जा रही सुविधाएं भी विस्तार से सम्मिलित की जा रही है।
0: चलिए जानते हैं कि आज मेरी लाडली पोती मेरी तरह बुजुर्गों के मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन व सचेतन से जुड़ी हुई कौन सी नई जानकारी देने वाली है।
2: गुड मॉर्निंग दादाजी, कैसे हैं आप?
0: ठीक हूँ लक्ष्मी, तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा कल का आउटिंग फ्रेंड्स के साथ?
2: अरे दादाजी क्या बताऊँ, दोस्तों से मिलकर तो अलग ही मजा आ जाता है। पहले फिल्म, फिर डिनर और ढेर सारी बातें। कितना भी बिजी रहो लाइफ में, पर हर इंसान को अपने दोस्तों से मिलने के लिए टाइम निकाल कर जरूर जाना चाहिए। सब अब ऑफिस जॉब्स में बिजी है, मगर सच में जब मिले तो यादों का पिटारा खुल गया, सारा स्ट्रेस और टेंशन मानो कहीं गायब हो गया।
0: कह तो तुम ठीक रही हो, मगर अब न तो लोगों के पास समय है और न ही अब वो अपनापन वाला समय बचा है। समय तो हम बिताते थे अपने जमाने में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अब तो समय बहुत बदल गया है, अब कहाँ टाइम है किसी के पास।
2: अच्छा, कैसे समय बिताते थे?
0: बस बेटा क्या बताऊं, हर शाम लोकल ट्रेन और बस में ऑफिस से आते हुए भजन या लोक संगीत गाना, तो कभी अंताक्षरी खेलना, कभी खबरों और आसपास की चर्चा करना, तो कभी एक दूसरे का दुख सुख बांटना, और तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनों के साथ कार वाला मजा ही आता था, थकान का तो पता ही नहीं चलता था ऑफिस जाते या ऑफिस से वापस आते।
2: दादाजी सच में इतना एंजॉय करते थे आप?
0: हाँ बेटा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा धीरे धीरे सब बस से स्कूटर और फिर कार पर सवार हो गए। सफर तो आरामदायक हो गया मगर अपनापन कहीं खो गया। अब तो सालों हो जाते हैं एक दूसरे से बात करें।
2: ये तो सही कहा आपने, अब तो टेक्नोलॉजी भी है मगर फिर भी दूरियां बढ़ गई है। फोन हाथ में है पर बात करने का समय नहीं है। गाड़ी घर में खड़ी है मगर जाने और बुलाने के लिए हजारों बार सोचते हैं।
0: कुछ साल पहले तक तो हम और हमारे सब रिश्तेदार एक दूसरे से मिल लिया करते थे आराम से, न फोन करके जाना और न ही किसी के आने से परेशान होना। अतिथि देवो भवः सिर्फ नाम के लिए नहीं था, सच में दिल से मानते थे सब।
2: हाँ दादाजी, आई टोटली एग्री विद यू। महीने सालों तक किसी से मिलते नहीं है और दूरियां बढ़ जाती है और साथ ही बढ़ जाता है डिप्रेशन और अकेलापन।
0: लक्ष्मी अब क्या बताऊं तुम्हें, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है सुबह पार्क में बैठे बुजुर्ग एक दूसरे से जब एक घंटा बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन अकेलापन सा रहता है। खास तौर पर जब एक उम्र के बाद जीवन साथी भी नहीं रहता। कभी कभी सोचता हूँ कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है मगर साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता। जीवन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तनाव, अकेलापन और अवसाद सब एक साथ दुश्मन के रूप में बुजुर्ग शरीर में घर कर लेते हैं।
2: दादाजी, बुजुर्गों में बढ़ रही डिप्रेशन से बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। इसका तो बस एक ही सलूशन है और वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
0: अच्छा, तुम योग और प्राणायाम की बात कर रही हो?
2: हाँ दादू, इसके साथ साथ ध्यान यानी मेडिटेशन की भी बात कर रही हूँ।
0: लक्ष्मी, हमारी संस्कृति में ही बहुत कुछ है खुद के लिए जो हमें पता है, लेकिन हम शायद उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उससे अपनाना भूल जाते हैं।
2: दादाजी, क्या आप जानते हैं जो बुजुर्ग डिप्रेशन में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, भूख भी नहीं लगती और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो जाती है। मगर दादाजी, आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा फील करता है तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी बहुत सी मदद करता है। कुछ योजनाएं ऐसी है जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती है। अक्सर इस उम्र में बहुत से लोग बच्चों से अलग शहर में रहने या जीवन साथी को खो देने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग भी मुहैया कराई जाती है।
0: कैसी काउंसलिंग और इससे कैसे अकेलापन या डिप्रेशन दूर किया जा सकता है?
2: ये काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट द्वारा कराई जाती है, मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स। चलो मैं आज आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही एक एक्सपर्ट से जो बताएंगे कि कैसे बुजुर्ग के इस अवसाद को खत्म किया जा सकता है। आप अगर चाहो तो हम आज उनके क्लिनिक चल भी सकते हैं। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी समय समय पर सेवा के रूप में करते हैं।
3: हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है।
4: अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
3: दूसरा है एल्डर लाइन 14567 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन।
4: तीसरा है जेरियाट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल कर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल कर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।
3: चौथा है से देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा।
4: राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा।
3: अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है।

0: आर्य द्वारा निर्मित और प्रसारित।
1: आज पता चला कि कैसे मनोवैज्ञानिक लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं।
2: हाँ भाई, ठीक बात है। जब कोई साथ नहीं दे सकता, तब कुछ खास लोग ही आते हैं जीवन में ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर।
1: सच में अक्सर दादाजी खबरें देखते हैं कि बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। खराब होती है सेहत से वो उबर नहीं पाते। मानसिक कमजोरी धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है।
2: लक्ष्मी, मेरे दोस्त नरेश की सेहत हार्ट ऑपरेशन के बाद काफी बेहतर होने लगी थी, मगर उससे पहले उसके बच्चे भारत छोड़ अमेरिका शिफ्ट हो गए बेहतर करियर की तलाश में। और बस अच्छे खासे नरेश को डिप्रेशन होने लगा और फिर भूख प्यास भी कम होने लगी और फिर ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो गई। अब अगर कोई उस टाइम उससे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स के विषय में जानकारी दे देता तो शायद वो भी जल्दी रिकवर कर पाते। अब अगर वो अमेरिका चले जाते, बच्चे सब आसपास होते, मगर फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना, यहाँ की बोली, सब कुछ उसे बहुत याद आती। और तो और अवसाद फिर से एक बार उसके जीवन में आ चुका है, जिससे निकल पाना अब संभव हो भी पाएगा या नहीं पता नहीं।
1: दादाजी, क्या आप जानते हैं, सेल्फ हेल्प के लिए और मन के शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन यानी ध्यान।
2: सही कहा तुमने। मेडिटेशन यदि सही से किया जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं व्यथित भी नहीं होता और गलत ख्याल या सोच नेगेटिव नहीं होती। और 60 के बाद वैसे भी मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लान कंपलसरी हिस्सा होना चाहिए। अगर नहीं किया ध्यान तो खो सकता है सारा ज्ञान।
1: वाह दादाजी, शायरी। हाँ।
2: मेडिटेशन के साथ साथ योग भी हमारे जीवन को सही दिशा और एकाग्रता देता है, यानी फोकस। तो उम्र कोई भी हो, योग और मेडिटेशन इज ए मस्ट फॉर एवरीवन।
1: आज तो आप बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं दादाजी। अच्छा, चलो इसी बात पर आज योग और मेडिटेशन के बारे में डिटेल बताते हैं सभी को, वो भी एक्सपर्ट से बातचीत के जरिए।
2: आइए करते हैं स्वागत सहज योग मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, आर्किटेक्ट व शिक्षा विद्वान डॉक्टर आराधना जिंदल जी का FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में।
3: FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: आपका स्वागत डॉक्टर आराधना जिंदल जी। तो अब हम चाहते हैं कि आज हम आपसे प्रश्न करें और जितने भी हमारे श्रोता हैं वो भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही संभालें और मेडिटेशन के माध्यम से या आपके जो उत्तर आएंगे उनके माध्यम से अगर हम अंबाला की जनता को और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं अगर हम उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता ले आए तो हम प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सहज योग का अभ्यास करने का आपके लिए क्या महत्व है, कृपया विस्तार से बताएं।
3: देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि सहज योग का अभ्यास हमारे जीवन में हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, हमें संतुलन में रहना सिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज की भागदौड़ की जिंदगी में। आप जानते ही हैं कि हम आज एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हर नया दिन एक नया आविष्कार, एक नई डिस्कवरी, एक नई परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं। और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक टेंशन में, स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, एक अपने एक जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है, परिवार का, स्वास्थ्य का, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है
2: जी।
3: अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना मन और बुद्धि की
2: जी।
3: जब हम बात करते हैं मानसिक और शारीरिक, क्योंकि मन, बुद्धि, मानसिक, शारीरिक, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ये एक तरह से कारपेट की तरह वोवन है, ठीक है। तो जब हम ये बात करते हैं तो जब हम अंदर से ही स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम अपना 100% कभी भी कहीं भी नहीं दे सकते, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारी जॉब, बिजनेस हो, हम हर जगह अनसेटिस्फाइड से, अनबैलेंस से ही रहते हैं। तो क्या होता है कि जो सहज योग ध्यान है ये जब हमें वर्तमान में रखता है ध्यान के माध्यम

0: माध्यम से तो हम परिवार के बीच में बैठे हैं तो भी हम संतुलन में हैं, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिएक्शंस ही हमारे संबंध बिगाड़ती हैं परिवार में, रिएक्शंस ही हमें बाहर के लोगों के साथ हमारे एक डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं, और रिएक्शंस ही कहीं ना कहीं हम अपने जॉब पे करते हैं तो हमारे और हमारे बॉस के हमारे कलीग्स के संबंधों को खराब करती हैं। रिएक्शंस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हर जगह एक जिसे कहते हैं अनबैलेंस क्रिएट करती है। तो जैसे जैसे हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, बैलेंस में रहना सीख जाते हैं, तो हमारी रिएक्शंस कम होने लगती हैं, हमारी प्रेम बढ़ने लगता है लोगों के साथ, हमारा एक समन्वय बढ़ने लगता है लोगों के साथ, लोग हमें प्यार करने लगते हैं, हम लोगों को प्यार करने लगते हैं, और ऐसे क्या हो जाता है एक हर जगह हार्मनी क्रिएट होने लग जाती है, एक वातावरण एक घर में परिवार में एक ऑफिस के प्लेस में बिजनेस प्लेस पर। तो ये एक सहज योग का एक बहुत बड़ा फायदा है।
1: क्या आप बता सकती हैं कि सहज योग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ता है जी। देखिए अगर हम सहज योग को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि सहज योग है क्या। मैंने आपसे बात की थी शिमाता जी निमला देवी की, जिन्होंने सहज योग की स्थापना की 5 मई 1970 में। तो जब हम हाथ खोल के बैठते हैं और हम मांगते हैं कि माँ मेरी कुंडलनी शक्ति जागृत कीजिए, तो हमारी शक्ति ये जागृत होती है और हमारे 6 चक्रों को भेद कर हमारा भ्रमरंध्र खोल देती है, यानी दशम द्वार खोल देती है, हमारा संबंध परमात्मा से करा देती है, और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यानी इसके बाद हमारा क्या होता है, उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम जब मेडिटेशन करते हैं, सवेरे शाम मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे धीरे हमारे जो चक्र, जो हमारी कहते हैं ना हमारी खुद की रोज दिनचर्या से हमारे बाधित हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो चक्र और हमारी नाड़ियाँ जो उनमें ब्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। और जैसे जैसे ये चक्र और नाड़ियाँ खुलने लगती हैं, हमारे अंदर संतुलन आने लगता है, हमारा शरीर ठीक होने लगता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि हमारा शरीर ठीक होने लगता है। और देखिए जैसे जैसे हमारा शरीर ठीक होगा, धीरे धीरे क्या हमारा मन भी अच्छा होने लगता है। हमारा मन से बना है मानसिक
1: जी।
0: तो मन हमारी लेफ्ट नाड़ी से बनता है, राइट नाड़ी से शरीर, मन और शरीर का आपस में लय स्थापित हो जाती है जब कुंडलनी शक्ति ऊपर उठती है, हमारी तीनों नाड़ियों को ले जाके संतुलित करती है, हमारे विचारों को खींच लेती है, विचारों को खींच के हमारे सहस्त्रार से बाहर निकलती है। तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, और धीरे धीरे हम क्या होता है एक ब्लिस फील करते हैं। हम एक परिवार में बैठे हैं, हम शांत हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, हम वर्क प्लेस पे हैं, शांति से काम कर रहे हैं। जैसे एक देखिए समुन्दर है, इसकी तुलना आप समुन्दर से करिए, गहरा, जितना समुन्दर गहरा होगा उसमें उतनी कम रिपल्स या बिल्कुल ना के बराबर रिपल्स है। रिपल्स कहाँ होती है, जो तट पर होता है समुन्दर, वो ही ज्यादा हिलता है, आगे और पीछे जाता है, है ना, वो शैलो होता है जो फिर हम अपनी गहराई पाने लग जाते हैं रेगुलर ध्यान से।
1: कई बार नींद नहीं आती है जिस कारण अगले दिन हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्या तरीका होना चाहिए ताकि हमारी नींद भी पूरी हो तो अगले दिन हम अपना 100% दे सकें?
0: ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति स्ट्रेसफुल है
1: जी।
0: मतलब मुझे तो लगता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं कि जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, और जो कहता भी है वो भी शायद कहीं ना कहीं ये बात असत्य बोल रहा है। तो जब हम एक बार अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, उसके बाद कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे एक पानी पैर क्रिया होती है, इसको हम फुट सोक कहते हैं। हमारे भारतीय जो हमारा विज्ञान है, ज्ञान जो भी कह सकते हैं, उसमें भी बताया है कि रात को सोने से पहले अगर हम दोनों पैर को अपना पानी में डालें और एक मुट्ठी भर नमक डाल दें उसमें, क्योंकि मुट्ठी जो नमक होता है ना, ये हमारा गुरु तत्व होता है। ये क्या करता है, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, जितनी भी बॉडी में नेगेटिविटी होती है पूरे दिन की, वो खींच लेता है, हमारे स्ट्रेस को, हमारे विचारों को खींच लेता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने एक बकेट में इतना पानी लेना है कि जितने हमारे एंकल्स डूब जाएं, थोड़ा सा नमक डाल देना, समुद्री नमक, और अपने दोनों पैरों को सिर्फ 10 मिनट डाल के हमने ध्यान उसी मुद्रा में करना है, उसी स्थिति में करना है। सिर्फ सोने से पहले आप इतना ही कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैं सारी सारी रात तारों को, अगर मैं, हम छोटे थे ना तो हम बाहर सोते थे तो तारों को गिनती रहती थी मैं, मुझे याद है।
1: यानी कि आप जागती रहती थी।
0: हाँ, जागती रहती थी ना। तो लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ, एक सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टाइम है, एक पल में मुझे नींद आती है।
1: बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न इसलिए था क्योंकि आज के डेट में हर कोई स्ट्रेस से भरा है और जब हम सोने जाते हैं तो शायद हम अच्छे से नींद नहीं कर पाते हैं, जिसका असर हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी पे पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए।
0: सपोरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये एक मौका दिया एक अपनी बात को कहने का, व्यक्त करने का और श्रोताओं तक पहुंचाने का, आप जो आपका रेडियो वितस्ता है। मैं एक ही बात कहूंगी, आप ध्यान करें सवेरे शाम 5-5 मिनट मिनिमम, ठीक है, आप ध्यान करिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप आध्यात्मिक और आप इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे। तो यही मेरा एक संदेश है आप सभी लोगों के लिए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।
2: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: देखा दादू, कितना जरूरी इस लाइफ को सही ट्रैक पर चलने के लिए मेडिटेशन और योग, क्योंकि अगर मस्तिष्क और में शांति से काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक स्पीड और माइलेज के साथ चलेगी।
1: क्या बात, तुम तो बिल्कुल इंजीनियर की तरह बात कर रही हो, वो भी लाइफ की इंजीनियरिंग के बारे में।
3: थैंक्स दादू, होपफुली आप बताओगे अपने सभी साथियों को कि अकेलापन का सबसे अच्छा साथी योग और मेडिटेशन है।
1: जल्द ही अपने दोस्तों की बैठक करता हूँ और उसमें ये सारी जानकारी साझा करूँगा कि कैसे इस बहुत बड़ी मगर अनदेखी प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है।
3: दादू, साथ ही और भी जानकारी दे दीजिए उन्हें योजनाओं के बारे में, याद है ना?
1: बिल्कुल याद है। नंबर 1, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।
3: नंबर 2, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 1-4-5-6-7। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए ये हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वो 1-4-5-6-7 पर कॉल कर सकते हैं।
1: नंबर 3, जेरियाटिक केयरगिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयरगिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयरगिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के लिए जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है।
3: नंबर 4, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
1: नंबर 5, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है।
3: नंबर 6, मोतियाबिंद सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: नंबर 7, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं।
3: इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा रही है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए।
1: वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समाज की पहचान। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 16, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सचेतनता और ध्यान। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आरजी किडनी ने, भरत ददू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने, और इसमें आपने वॉइस बाइट सुनी डॉक्टर आराधना जिंदल जी का, जो मेडिटेशन और सहज योग एक्सपर्ट है। उनका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्योदय योजना पर आधारित तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी, मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे, तुम्हें अगर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर, और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

تویچو بوزان 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں

0: सभी को मेरा नमस्कार और राम राम। और मैं हूँ रेडियो दोस्त आपका भारत सोपोरी अंबाला FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता सामुदायिक रेडियो से। और मैं स्वागत करता हूँ प्रीतम भाई का जो अपना रेडियो चरखी दादरी से है, और गुरविंदर जी है और हमारे साथ जो आज के मेहमान है, आप दोनों का भी स्वागत अभिनंदन। हम अभिनंदन करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का जो हमें लाइव सुनते हैं रेडियो पर, रेडियो वितस्ता पर, अपना रेडियो चरखी दादरी से, रेडियो अरावली नारनौल से, FM भारती पेहवा से, रेडियो गोंदर करनाल से, और भी अन्य सामुदायिक रेडियो स्टेशन जहां पर यह कार्यक्रम लाइव होता है सोमवार से शुक्रवार तक शाम 4 बजे से 5 बजे तक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल हैं और इस गर्मी में आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें गर्मी में अपना चेहरा ढक के जाना चाहिए, अपना सिर ढक के जाना चाहिए, ताकि लू का खतरा हमारे सेहत पर, हमारे स्वास्थ्य पर ना हो। और एक बार फिर पुनः स्वागत आप सभी का। आपकी आवाज NGF रेडियो पलवल से भी लाइव होती है। और आज है 4 जून 2026 बृहस्पतिवार, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, 2083 विक्रम संवत। और आप सभी श्रोताओं को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमने एक नंबर दिया है, जो नंबर है 8816904904। नंबर एक बार फिर 8816904904। उम्मीद करते हैं कि कुछ क्षणों में हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ेंगे। और गुरविंदर सिंह एक ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के साथी हैं जो पूरे एक घंटे सुनते रहते हैं। कभी कभी हम इनको बोलने का मौका देते हैं, पर हम जो भी बोलते हैं उसमें सारा श्रेय गुरविंदर जी को जाता है, क्योंकि ये हमारे मेहमानों के साथ तालमेल बिठाते हैं और उनको बुलाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से कैमरा के सामने आना, कैसे रखना है। हमारे साथ जो दूसरे साथी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने पास कोई लाइट जगाएं जिससे हम इनका चेहरा और अच्छे से देख पाए। ये BDPO बेरी से हैं और विकास कंबोज तो हमें अच्छे से दिख रहे हैं, पर BDPO साहब हमें चेहरे से अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप सामने से कोई लाइट जलाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमें ऐसा लगा था कि कोई कॉल आया है शुरू में ही। तो प्रीतम जी, आप कैसे हैं? और कल हमने आपको बहुत सारा मिस किया, कहां थे आप?
1: नमस्कार भारत जी और सभी श्रोता व सभी दर्शकों को मेरा राम राम। भारत जी, कल क्या था कि आधे किले में ईख बो रखी है और शाम को समय पानी मिल गया, उसमें पानी लगाने के लिए चला गया। मैं वो वैसे प्रोग्राम सुन रहा था, तो वहां व्यस्त थे।
0: इससे बेस्ट काम कोई भी नहीं हो सकता है। राम राम हरियाणा हम अगले दिन करेंगे, पर पानी मिला तो पानी उसमें लगा दो, उससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकते। और हमारे पास सर्जन सिंह लिखते हैं, पैनल में बैठे सभी महान विचारकों को मेरा नमस्ते। सर्जन सिंह, हम आपको भी नमस्ते करते हैं। और विचारक तो हम शायद अपने आप को नहीं कह सकते हैं, बट हम तो एक सूत्रधार है, आप सूत्रधार हमें कह सकते हैं। सूत्रधार आपके, हमारे बीच, लोगों के बीच और इस कार्यक्रम राम राम हरियाणा के बीच। हमारे पास डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आए हैं। आपका स्वागत सर, अभिनंदन, और आपके आवाज के हम अभिलाषी हैं। शुरुआत करें आप अपनी मधुर आवाज से।
2: जी, सबको राम राम। पैनल में जितने मित्र विराजमान हैं उनको भी राम राम, और इस कार्यक्रम को अलग अलग सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्रणाम पहुंचे, और प्रणाम उनको भी जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई के कमेंट किया। आजाद सिंह मान जी हैं हमारे मानपुरा वाले, और जत्थेदार सर्जन सिंह कुंडरी वाले, इनको विशेष रूप से इनका अभिनंदन करना बनता है ना भरत जी?
0: जी जी जी।
2: और रेडियो ग्रामोदय से संगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं संगम से ये पूछूंगा सबसे पहले आगे बढ़ने से कि क्या इनका टेलीफोन रिसीव करने का जो तंत्र है वो ठीक काम कर रहा है? संगम जरा बताएं हमें। और मैं ये चाहूंगा
0: सर, एक कॉल आ रहा है
2: गुरविंदर सिंह
0: सर, अभी सर एक कॉल आ रहा है शायद।
2: कॉल शायद नहीं, कॉल तो पक्का पकड़ लिया करो आप, देरी नहीं करनी चाहिए पल भर की।
0: आपके पास ही आ रही है सर अगर। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
3: नमस्कार जी, राम राम हरियाणा चैनल को से, राम राम
0: जी। राम राम,
3: हाँ से बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी, दोबारा बोलिए प्लीज।
3: दुड्डी वाला नंदकर्ण से।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, नाम क्या आपका?
3: राजेंद्र शर्मा जी।
0: जी शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं?
3: ये हमारे गांव फिरनी की बहुत समस्या है जी, फिरनी बंद है बिल्कुल।
2: खंड कौन सा आपका? खंड
1: दादरी खंड में पड़ते हैं सर ये। हु?
3: दादरी बाड़ा, जिला दादरी बाड़ा।
2: चलिए, क्या समस्या को थोड़ा विस्तार से बताइए। फिरनी बंद है मतलब कब्जे हैं, क्या है?
3: फिरनी शुरू से ही बंद है, 27-27.5 फुट की फिरनी है, केवल 3.5 फुट जगह बच रही है बस।
2: कौन ले गया जगह आपकी? मैं न्यू दो बुझ हूं, फिरनी आपकी, गांव आपका, कब्जा करनी है आपके, सूदे करो लोगों ने, मनाओ।
3: एक दो बार अप्लीकेशन लगाए जी खुले दरबार में भी, मास के लिए रोजाना कहते हैं अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अगले महीने होगी, अगले महीने होगी।
2: अच्छा, कोई मुकदमे तो नहीं चल रहे?
3: ना, कोई मुकदमा नहीं चल रहा।
2: चलिए, तो गुरविंदर सिंह जी नोट करिए, इनके बीडीपीओ को कार्यक्रम में लेंगे या अन्यथा इनके बीडीपीओ से बात करके इस गांव की फिरनी पर अगर फिरने घूमने की सुविधा नहीं है, अगर वो इतनी खुली नहीं है कि हम उस पे जा आए गाड़ी लेके, तो फिर फिरनी का मतलब क्या रह गया? फिरनी को नहीं रही फिर तो। गुरविंदर जी नोट करिएगा इसको, ये विषय आवश्यकता पड़ने पर मेरी संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी से बात कराएं। आज के जो दो मेहमान मुझे सामने नजर आ रहे हैं, इन दोनों का परिचय करा दिया क्या आपने?
0: नहीं अभी नहीं सर, नहीं सर अभी नहीं, अभी नहीं, समय नहीं लगा। हम विधिवत रूप से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, अगर आपको आवाज आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जो बात है वो हमने नोट कर दी और उम्मीद करते हैं कि आपको या तो आज के कार्यक्रम में या अगले कार्यक्रम में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे अधिकारियों के साथ बात करने के बाद। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं बीडीपीओ बैरी से और साथ में ग्राम पंचायत से मुझे लग रहा है कि हमारे साथ जुड़े हैं विकास कंबोज जी। आप दोनों का स्वागत और अभिनंदन, और गुरविंदर जी आप कृपया इनका परिचय दें और उसके बाद इनसे बातचीत करना शुरू करेंगे।
4: धन्यवाद भरत जी।
0: जी धन्यवाद।
4: राम राम हरियाणा के आज के प्रसारण में जुड़े सभी श्रोता और हमारे पैनल में जुड़े सभी मेहमानों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपने अपने जो कीमती समय में से जो समय निकाल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि रोज ही हम जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत को हमारे प्रोग्राम में जोड़ते हैं ताकि दूसरी पंचायतों को भी उनसे मार्गदर्शन मिल सके, उसी कड़ी में आज हमने फतेहाबाद जिले और विकासखंड में, इनका फतेहाबाद है, एक बरसीन पंचायत है, इस पंचायत से हमारे सरपंच श्री विकास कंबोज जी जुड़े हैं। इन्होंने अपने गाँव में सभी जो बुनियादी सहूलतें गाँव वासियों के लिए वहां से मतलब इनको मुहैया करवाई है। और दूसरा, इनकी पंचायत की जो एक खासियत है, इन्होंने जो बालिका पंचायत है उनका गठन भी अपनी पंचायत में किया है। उनकी जो सरपंच है मैडम स्तुति जी, उन्होंने भी जुड़ना था इस प्रोग्राम में, किसी कारणवश वो कहीं बिजी हो गए, जुड़ नहीं पाए। तो मैं विकास कंबोज जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ कि इन्होंने अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। और दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं हमारे मसरौली के बीडीपीओ साहब, इनके पास बीडीपीओ बेरी का भी चार्ज है, श्री धर्मपाल जी, जे हमारे डॉक्टर साहब का देश था कि जो एनवायरमेंट वाटर माउंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है कल को, उसके लिए क्या क्या जिक्र है उनके बारे में बताने के लिए हमने इनको जोड़ा है। मैं दोनों मेहमानों का फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आज के जो सरपंच मेहमान हैं श्री विकास कंबोज जी से, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने परिचय देने के उपरांत अपने गांव के विकास की कहानी हमारे श्रोताओं और हमारे पैनल के मेहमानों के साथ साझा करें। श्री विकास कंबोज जी।
5: नमस्कार जी सभी को, राम राम जी, सत श्री
0: राम।
5: मैं जी विकास कंबोज जी, जिला फतेहाबाद, ब्लॉक फतेहाबाद, गांव बरसीन से सरपंच हूँ जी। और सबसे पहले मैं गुरविंदर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, जिन्होंने आज हमें मौका दिया सारे हरियाणा में से एक पंचायत का बरसीन को चुना आज की तारीख में।
0: बरसीन से जो हमारे साथ आज के मेहमान है विकास कंबोजी, अगर आपके कमरे में कुछ और लोग हैं उनकी आवाजें यहाँ आ रही हैं तो कृपया आप ये सुनिश्चित करें कि वहां पर आप अकेले ही रहें ताकि बाहर की जो आवाजें हैं वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि बाहर की आवाज ज्यादा स्ट्रांग आती है, या ताकि हमारी जो बातचीत है वो अच्छे माहौल में हो और साफ सुथरी आवाज में हो। मैं साथ ही अभिनंदन करूंगा
2: भारत जी पल भर के लिए मैं रोकूंगा। मैं समझ रहा हूं कि हमें जब तक सरपंच साहब अपने यहाँ मामले को दुरुस्त करते हैं, हम एक बार बीडीपीओ साहब को चर्चा का हिस्सा बनाते हैं और वो जो महत्वपूर्ण विषय है जो
5: आवाज नहीं आई थी, क्या बोले थे जी आप?
2: हाँ
0: जी विकास जी, आपको विकास जी
2: बीडीपीओ साहब आवाज मिल रही है मेरी?
0: जी सर
2: नहीं, बीडीपीओ साहब को अगर मेरी आवाज आ रही होती तो ताते और मेरे तक उनकी आवाज पहुंचती। ऑडियो नहीं मिल रहा। गुरविंदर जी आपने चेक क्यों नहीं कराया भाई? बीडीपीओ साहब बोलिए कुछ। नहीं, उनके उनका ऑडियो नहीं जुड़ रहा। गुरविंदर जी ऑडियो ठीक कराइए उनका एक बार जरा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए विकास भाई, तब तक आप अपने गांव की चर्चा करना शुरू करिए।
5: हाँ जी, हेलो,
2: आप अपने गांव का जो आधारभूत परिचय है वो दीजिए। कहाँ है आपका गांव, कितनी आबादी है, और आपको जब से सरपंची मिली ऐसे क्या बड़े परिवर्तन आपने अपने गांव में कर दिए जिसके कारण आपको पहचान मिली है, संतुष्टि हो रही है?
5: ओके सर, मेरा गांव बरसीन, जिला फतेहाबाद, ब्लॉक फतेहाबाद। आवाज आ रही है सर
2: जी? हाँ जी, हाँ
1: आ रही है, आ रही है सरपंच साहब।
5: जिला फतेहाबाद, ब्लॉक फतेहाबाद, फतेहाबाद से 3 किलोमीटर दूर गांव मेरा बरसीन है सर। तो जब मैं सरपंच बना, सरपंच बनने से पहले कुछ सपने होते हैं जी, हर एक काम करने से पहले कुछ बंदे के सपने होते हैं
2: जी।
5: मेरा सपना था जी, अगर गांव वाले अगर मेरे को मौका देते हैं सेवा के लिए, तो कुछ सपने थे जी, मैं गांव में ये विकास करूंगा और हरियाणा नंबर 1 पंचायत लाने के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा
2: जी।
5: तो सर हमने मेरे गांव में से जिला परिषद चेयरमैन सुभाष सुमन खिच्चड़ जी उनका सहयोग बहुत रहा है मेरे को जी। तो सबसे पहले जी गांव में जो भी काम करने थे उनमें से पहले, सबसे पहले तो हमने काम सारे गांव को वाईफाई और कैमरे से किया कवर।
2: अच्छा, कितने कैमरे लगाए आपने पूरे गांव में?
5: कम से कम होंगे 50 के करीब जी।
2: फायदा बताइए क्या हुआ?
5: फायदा जी, जो भी एंट्री है, एग्जिट, रोड ऑन रोड, कोई भी चोरी या कोई, क्योंकि मेरा ना स्टेट हाईवे के ऊपर गांव है जी,
0: ढूंढ तो नहीं रहे थे मेरे को।
5: तो उन कैमरों से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोई एक्सीडेंट वगैरह रोड पे होता है तो उनसे पुलिस प्रशासन पकड़ कर लेता है, और कोई गांव में कोई लड़ाई दंगा या कुछ है, चौक में भी है, तो उससे हमारे गांव को बहुत फायदा है जी।
2: चलिए इस विषय पर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीडीपीओ बेरी हमारे साथ हैं और उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। बीडीपीओ साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, मेरी आवाज पहले भी जा रही थी, लेकिन आप माइक से नहीं जुड़े हैं। कोशिश करिए एक बार एग्जिट करके आप दोबारा जुड़ें और माइक्रोफोन के साथ जुड़ें। गुरविंदर जी, ये पहले चेक करने की चीजें होती हैं, बार बार वही चीज रिपीट होती है, इस समस्या खड़ी हो जाती है हमारे लिए, सारे कार्यक्रम की लय गड़बड़ हो जाती है। जो कैमरे आपने लगाए प्रभु,
5: हाँ जी,
2: कितना खर्चा किया होगा लगभग और कौन से फंड से किए?
5: ये जी पंचायत फंड से किए थे जी।
2: पंचायत फंड से कर दिया, और लगभग कितना खर्चा हो गया होगा?
5: लगभग वो दो शिफ्ट में लगवाए थे जी, कुछ 3 लाख के लगभग था जी, 3.5 लाख।
2: और उनकी मेंटेनेंस ठीक से हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि लग गए फिर खराब हो गए तो
5: संभाल नहीं पाए?
2: और मॉनिटर कहाँ से होते हैं वो?
5: उसके जी हमने 2 बनाए हैं जी, एक तो ग्राम सचिवालय में जी,
2: हाँ,
5: और एक अपने सीनियर मॉडल स्कूल, अपने गवर्नमेंट स्कूल, उसमें।
2: ग्राम सचिवालय में और विद्यालय में।
5: हाँ
2: जी, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बीडीपीओ साहब कैमरे पर नजर आ रहे हैं, कुछ बोलिए बीडीपीओ साहब, शायद आपकी आवाज हम तक आ जाए। बीडीपीओ साहब आपके फोन में इशू हो सकता है, फोन बदल के देख लीजिए, किसी और के फोन से जुड़ने की कोशिश कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे ऑडियो पर।
0: सर बीडीपीओ साहब वो बोल भी नहीं रहे हैं, अगर इतनी जिम्मेदारी से हम किसी कार्यक्रम में आते हैं तो कम से कम इतनी जानकारी तो, कितने साल से हम ऑनलाइन शोज करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई अगर टेक्निकल दिक्कत है तो फोन बदल के देख लीजिए, ऐसे में हमारे
2: हर
0: सर वो कुछ बोल भी नहीं रहे, ध्यान कहीं और है।
2: भारत जी रुकिए, जब वो म्यूट थे तब तो अलग बात है, म्यूट है, अनम्यूट होने पर भी नहीं वो उनकी आवाज आ रही है, ये समस्या है। हाँ बोलिए वीडियो साहब, कुछ तो बोलिए,
0: कुछ ना बोलिए, मैंने माइक ऑफ कर रखी, गुस्सा निकाल लो माइक।
2: हाँ जी हाँ,
0: नमस्कार जी, लोगों को ले आते हैं।
2: हाँ नमस्ते बीडीपीओ साहब, ये आवाज आप ही की है मेरे ख्याल से, क्या शुभ नाम आपका?
0: अब आ गया,
5: हेलो,
2: अपना शुभ नाम बताइए कृपया। हाँ जी नाम बताएं बीडीपीओ साहब।
5: हेलो
2: बीडीपीओ साहब,
0: पता नहीं किस गधे को
2: आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपना नाम बता दीजिए कृपया,
0: माइक ऑफ है।
5: हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज अब।
2: हाँ अपना नाम बताइए कृपया।
5: हाँ जी सभी को
2: चलिए, माचरोली और बेरी, भारत जी आपको बता दूं बेरी नहीं है, गांव का नाम बेरी है, मतलब खंड का नाम
5: बेरी
2: जी। अच्छा मुझे, मैं एक बार हम दोबारा सरपंच साहब के पास जाएं, इससे पहले मैं आपसे दो तीन सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार ने पर्यावरण दिवस पर विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए कहा है, राज्य सरकार की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शन आई होंगी, आपकी जानकारी में है क्या?
5: जी सर, हमने शेड्यूल जारी कर दिए कल के लिए, जो पर्यावरण दिवस पर ग्राम सभा है उनके लिए जी, सभी ग्राम पंचायतों में, और ग्राम सचिवों को डायरेक्शन भी दे दी
2: जी। हाँ बताएं बताएं, हाँ वीडियो साहब अपनी बात जारी रखें, भारत जी आपकी आवाज आ रही है।
5: हाँ जी सर, सभी ग्राम सचिवों को पंचायत में सरपंच को डायरेक्शन जारी कर दिए गए हैं, कल ग्राम सभा भी होगी और सभी पंचायतों में पांच पांच वृक्ष पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा।
2: चलिए, कभी कभी क्या है कि हमारी जो विशेष ग्राम सभाएं हैं वो औपचारिकता बन के रह जाती हैं और खाना पूर्ति हो जाती है, कागज पूरे कर लिए जाते हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं मेरे सामने पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक भारद्वाज और पेयजल और स्वच्छता विभाग जलशक्ति मंत्रालय के सचिव श्री अशोक के मीणा का पत्र है, उन्होंने जो कहा है वो आप सब लोगों को फिर से अपने सचिवों को सरपंचों को ध्यान में कराएं कि विशेष ग्राम सभाओं की तस्वीरें, छोटे वीडियो, संक्षिप्त रिपोर्ट और कार्रवाई का प्रलेखन किया जाए, कार्रवाई जो है वो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी है, छोटे छोटे वीडियो भी बने और ग्राम सभाओं और संबंधित गतिविधियों का विवरण निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप अर्थात पंचायत निर्णय पोर्टल और SBM जी IMIIS, ये जो आपके प्लेटफॉर्म बने हुए इन पर स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान मॉड्यूल, इन सब पर इसको अपलोड किया जाना है, क्या आपके सचिव इस सारे काम को संभालने में सक्षम है?
5: जी बिल्कुल सक्षम है और कर रहे हैं कंटिन्यू, पीछे भी हमने ग्राम सभाएं करवाई थी जनवरी में और उनकी वीडियोग्राफी भी हुई थी और पोर्टल पर अपलोड भी हुई थी सभी, और लाइन डिपार्टमेंटों को भी हम बुलाते हैं इसमें।
2: पांच पांच गांव, पांच हर गांव में पांच पेड़ या पौधे लगाने का आपने निर्देश जारी किया है, तो ये जो पौधे कोई विशेष प्रकार के पौधे आपने तय किए हो कि ये पौधे लगाए जाएं, इस दिशा में भी कोई निर्देश है कि उनको कहा है कि जो जो भी मर्जी लगाए लेकिन पांच पेड़ पांच पौधे लगाएं जरूर गांव में?
6: छायादार वृक्षों की बात है सर,
2: छायादार
6: जी जी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी टाई अप हो गया है। अभी डीसी मैडम ने मीटिंग ली थी इस बारे में, एसडीएम मैम है अपने बेरी, उन्होंने भी मीटिंग की है सभी की।
2: चलिए ये बहुत सुखद बात है। प्रीतम जी आपके यहाँ भी हो रहा होगा, भारत जी आपके भी सब खंडों में गतिविधियां ऐसी ही हो रही होंगी। जो बीडीपीओ बेरी और माछरोली को जोड़ने का हमारा मंतव्य था ना भारत जी, केवल इतना था कि एक बार ये पता चल जाए कि हमारे खंड विकास और पंचायत अधिकारी जिनके मातहत सारी ग्राम पंचायतें काम करती हैं, उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या करने की सोची है। मैं बताऊंगा, कल विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण से जुड़े सवाल, पर्यावरण से जुड़ी जो चिंताएं हैं भारत जी, वे केवल भारत की संसद या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन पर चर्चा न हो। भारत सरकार ने इस बार ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वैश्विक स्तर पर पर्यटन की, जलवायु असंतुलन की, जलवायु संकट की जो चुनौती है, उसको केवल वैश्विक सेमिनारों, संगोष्ठियों और बैठकों से नहीं निपटा जा सकता। अंततोगत्वा इसके लिए गांव में धरातल पर काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए भारत सरकार के दोनों मंत्रालयों ने कहा है। और एक और इसमें जो नई चीज है, ये बीडीपीओ साहब ने नहीं बताई, लेकिन मुझे जो पत्र में दिखाई दे रहा है वो ये है कि इन दिनों जल शक्ति मंत्रालय जो हमारा है ना भारत जी, जल शक्ति मंत्रालय का एक अभियान चला हुआ है, स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान। जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान संचालित कर रहा है, और इस अभियान का समापन देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस पर यानी कल होने वाला है। तो ग्राम सभा में ये विषय भी रहेगा। चलो परीक्षा कर लेते हैं। विकास कांबोज जी,
7: हाँ जी सर,
2: आपके सेक्रेटरी ने, आपके बीडीपीओ ने आपको कुछ बताया क्या कल क्या करना है?
7: हाँ जी, ग्राम सभा की है, पर्यावरण दिवस है।
2: कितने बजे आपकी ग्राम सभा, कहाँ पर रखी है?
7: 10 बजे ग्राम सचिवालय में जी।
2: ग्राम सचिवालय में ग्राम सभा होगी 10 बजे, और क्या विशेष निर्देश है? हमने जो बातचीत की इसके अलावा भी कोई बात आपके यहाँ होने वाला है क्या कुछ?
6: इसमें सर एक स्वच्छता अभियान भी चलाना है, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण ग्राम सभा के बाद जो है ना ये कार्यक्रम भी होने हैं।
2: चलिए विकास जी तो म्यूट हो गए, इनकी आवाज तो आनी बंद होगी। भारत जी आप कुछ पूछना चाहते हो इस विषय को लेकर, स्वच्छता, पर्यावरण दिवस, गांव की ग्राम सभा? एक हमारे पास वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है जिनके पास दो दो खंडों की जिम्मेदारी है। जी भारत जी।
0: जी वीरेंद्र सर, मैं ये कहता हूँ कि पर्यावरण की जहाँ तक बात है उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। ये केवल गोष्ठियों में ही अगर हम इस विषय में बात करेंगे तो उससे हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए इस बार भारत सरकार ने जो बेसिक लेवल है हमारा, जो गांव का लेवल है, जो हमारा स्टेट का लेवल है, प्रदेश का लेवल है, उस पर इसकी जिम्मेदारी दी है। मैं बीडीपीओ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने लक्ष्य लिया है वृक्षारोपण का, वो क्या कल संपन्न होगा, और जब ये संपन्न होगा क्या आप उसका निरीक्षण भी करेंगे या आपके निर्देश तक ही वो सीमित रहेगा? जी सर।
6: हाँ जी, बिल्कुल संपन्न होगा, और जियो टैगिंग जो फोटो है ना, वीडियोग्राफी और फोटो, वो भी ग्रुप में शेयर करनी है, वो पोर्टल पे अपलोड भी होंगी, और बाद में निरीक्षण भी होगा, उनकी देख रेख के भी निर्देश दिए गए, समय समय में पौधों में नलाई गुड़ाई और पानी की व्यवस्था की जाए ग्राम पंचायतों की तरफ से।
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो जब हम ये कल कार्यक्रम कंप्लीट करेंगे, संपन्न करेंगे, उसके बाद उसकी देख रेख करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी हम पौधे लगाते हैं अगर हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी जो तादाद है, उनके जो नंबर्स है, वो कम हो जाएंगे। तो जितना लगाना जरूरी है उतना ही उसका देख रेख करना भी जरूरी है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने इस विषय पर आप सभी लोगों को जिम्मेदारी दी है, ग्राम लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर भी जिम्मेदारी दी है, उम्मीद करते हैं कि वो पूरी हो जाएगी। और हम भी कल के लिए प्रण करते हैं कि जितने भी शहरों में हमारे घरों में जगह है, चाहे हमारा अपना घर के अंदर, छत के अंदर बगीचा है, उसमें भी हम जरूर एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखरेख भी करेंगे, ताकि हम भी भारत वर्ष के जो पर्यावरण है उसमें हम अपना योगदान दे सके। जी प्रीतम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
2: मुझे क्यों लगा कि स्टूडियो की घंटी बजी, ऐसा है क्या?
0: नहीं, मुझे तो नहीं।
2: संगम, आपकी आवाज, क्योंकि घंटी आपको ज्यादा सुनती है। भारत जी, आपने हेडफोन लगा रखा है ना, मेरे तो कभी कभी इंडिकेशन नहीं आता।
0: जी प्रीतम जी,
2: प्रीतम जी,
1: सभी को नमस्कार। मैं तो कह रहा हूँ सर, हर घर का अगर गवर्नमेंट, ये पर्यावरण दिवस तो ठीक है, कल पर्यावरण दिवस है, लेकिन आगे भारत सरकार ऐसा करे, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी तो एक अपनी इच्छा है कि हर घर में लगभग एक पेड़ हो, तभी उसका नक्शा पास हो, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव हो। और ये पहल होगी, और जो लोग निजी गाड़ियों से जा रहे हैं कहीं पे, वो कम से कम हो, क्योंकि प्रदूषण में बहुत बड़ा कारण ये गाड़ियां, जो आज के टाइम में कुछ थोड़ा सा है प्रदूषण का कारण। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करके पर्यावरण दिवस में हम वैसे भी भागीदार बन सकते हैं।
2: 90.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो ग्रामोदय वाले श्रीमान संगम

0: के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विकास कंबोज, फतेहाबाद के गांव के सरपंच हैं वे, हमारे साथ थे हैं और फिर होंगे, माने उनका फोन ज्यादा नृत्य कर रहा है आज। बीडीपीओ बेरी साहब,
1: जी सर,
0: आपके क्षेत्र में हरियाली का जो कवर है गांवों में, आप दोनों ही खंडों की बात कर लेते हैं, मशरौली की भी कर लें और आपके बेरी की भी कर लें, कुल मिला के पेड़ पौधों की हालात कैसे हैं? हम जो ये हर साल अभियान चलाते हैं, कुछ बचे भी है कि नहीं?
1: नहीं है, पेड़ और हर साल लगवाते भी हैं। बाकी जो कई गांवों में ग्राम पंचायत की जमीन है उसमें वन विभाग की तरफ से भी लगाए जाते हैं, पंचायत वैसे भी जमीन देना चाहती है वन विभाग को, तो वो वृक्षारोपण के लिए दे रही है। अभी टारगेट होता है, हर साल होता है, अब की बार भी आएगा टारगेट भी बरसात के समय में।
0: अभी मैं भारत जी को एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारत जी, आपने कहा था ना कि पेड़ पौधों का होता क्या है, संभाल संभूल भी होती है कि नहीं, बचते भी हैं कि नहीं, या असल में लगते भी हैं कि नहीं? अभी हाल जो एक परिवर्तन हुआ है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, एक सकारात्मक बदलाव विकास कार्यों को लेकर जो आया है वो ये है कि विकास के काम या सरकार के अभियान, सरकार की योजनाओं का सत्यापन
2: जी। सर, आपकी आवाज मुझे लग रहा रुक गई किसी कारणवश। मैं प्रीतम जी आपसे जानना चाहूंगा, जब तक वीरेंद्र सर आते हैं उनकी आवाज आती है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पर्यावरण हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल करने वाला है?
3: हाँ जी, बहुत बड़ा रोल है पर्यावरण, क्योंकि हमें शुद्ध, जब तक अब आप एक ये हमारा नॉर्मल से बहाना होता है कि ठंड के अंदर प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण के कारण। अब गर्मियों में भी आप अगर देखोगे प्रदूषण है, जो हवा की क्वालिटी साफ सुथरी होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, और पेड़ लगाने से काम नहीं चलता, पेड़ों का हमें रख रखाव भी करना पड़ेगा।
2: जी जी।
3: और मैंने एक बोला भारत जी, हमने जब रेडियो स्टार्ट किया तो हमने पहली बार लगभग 100 के करीब पेड़ लगाए, होता है ऐसा, हमने रोड के साथ लगाए, उसमें से 30-35 पेड़ बचे
2: जी।
3: और ऐसे ही हमने खुद उसको संभाला, जबकि एक 1.5 महीने पानी डाला, सब कुछ किया, हो गए थे। लेकिन ऐसा ही सरकार के साथ होता है, रोडों के ऊपर पेड़ लगाते हैं, उसमें से लगभग, देखो मेरा ये मेरा निजी है कि मैं मानता हूँ उसमें 30-35% ही पेड़ बच पाते हैं
2: जी जी,
3: बाकी पेड़ खराब हो जाते हैं
2: जी। पर जब हम निरंतर इसको जारी रखेंगे, जैसे इस साल हमारे 35 या 40 पेड़ बच गए, अगले साल लगाएंगे, तो जो पेड़ बच गए वो एक बार बच गए और अगले साल हम फिर इसको जारी रखेंगे। मैं बीडीपीओ साहब से एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि बीडीपीओ साहब क्या क्या देखते हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं कि आप इसके बगैर और क्या क्या कार्य देखते हैं जहां तक हमारे ग्राम पंचायतों का सवाल है?
1: सर, इसमें ग्राम पंचायतों के स्तर पर जो भी हैं, अपने रास्ते हैं, नालियां हैं, चौपाल हैं, पंचायत घर हैं, लोगों के पानी की पीने की सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, बाकी और अपने पर्यावरण से संबंधित भी हैं। ग्राम स्तर पर जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं वो सभी जुड़े हुए हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं डिपार्टमेंट के साथ
2: जी। इसके साथ ही जुड़ा एक प्रश्न सर और करना चाहूंगा, जैसे अलग अलग कार्यक्रमों में हमारे पास अलग अलग सरपंच होते हैं, ग्राम जो बेस पर है होते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो एक सवाल सबसे हम पूछते हैं, क्या मैं विकास जी से भी ये सवाल पूछूंगा, पहले इनसे पूछूंगा फिर सर आपसे जानूंगा। विकास जी, क्या आपने अपने गाँव में कोई ग्राम गौरव पट लगा रखा है जहां से हमें ये पता चले कि आपने अपने गांव में, जब से आप सरपंच बने हैं, आपने क्या क्या काम किया है, ताकि गांव में अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आए उसको पता चले कि गांव में क्या क्या काम हो रहा है, तो उसका हम नाम देते हैं ग्राम गौरव पट। क्या आपने गांव में ऐसा कोई डिस्प्ले या कोई पट लगा रखा है?
4: सर, गौरव पट पहले लगा हुआ है, बट मेरी पंचायत का भी जो भी हमने काम किए हैं वो अभी तक उस पर कुछ नहीं लिखा गया। अब आने वाले टाइम में 6 मंथ बाद हम सभी कंप्लीट करके जो भी मैंने

0: काम किए, हम उस पर लिखवाएंगे गौरव पटरे, कोई भी बाहर से आए पढ़े देखे बिगाम में क्या विकास हुआ है। इस पंचायत ने 2022 में जो पंचायत बनी थी उसने 2022 से 27 में क्या क्या कार्य किए हैं और गांव का क्या क्या विकास किया।
1: विकास जी, जब से आप सरपंच बने हैं, जो आपने तब से आज तक इतने समय में काम किया है, क्या आपने उसका भी डिस्प्ले नहीं किया या वो भी आप 5 साल के बाद डिस्प्ले करेंगे?
0: हम जी अभी तक कुछ नहीं किया, अब तो बस गाँव वालों को पता है भी क्या विकास चल रहा है क्या नहीं चल रहा और गांव में कितना विकास हुआ है। पिछली पंचायत ने जो छोड़ा था अधूरे छोड़े थे वो कितने हुए हैं, ये तो हम हमारा कार्यकाल पूरे होने से लास्ट में करेंगे
1: नहीं, मैं आपसे आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, आपने कहा कि अभी तक कुछ किया नहीं है, जब से आप सरपंच बने हैं क्या आपने अपने गांव में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसको कहीं दर्शाया जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर कल को मैं आपके गांव में आता हूँ और मैं बिना पूछे किसी से बात करे बिना उस ग्राम गौरव पट से मैं ये जान सकूं कि विकास जी ने ये कार्य किया है। आप कह रहे हैं कि अभी तक कुछ किया नहीं है, तो क्या ऐसा हम मानते हैं कि आपने अभी अपने गाँव में कोई कार्य नहीं किया?
0: सर विकास किए हैं वो तो गांव में आप एंट्री करोगे आपको पता चल जाएगा भी पंचायत ने क्या किया है,
1: पर उसको लिखने में क्या दिक्कत है? मैं BDPO साहब से यही जानना चाहता हूं कि सर जब आप किसी भी गांव में निरीक्षण पे जाते हैं
2: यहां पे
1: क्या क्या
2: जी, भारत जी, भारत जी, एक
1: जी, जी जी जी
2: एक करेक्शन करूंगा, एक करेक्शन करूंगा। ये जो ग्राम गौरव पट है ना, ग्राम गौरव पट पे आपको विकास कार्यों का उल्लेख नहीं करना।
1: जी
3: जी मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार।
1: जी जी
3: एक मिनट। हाँ। जो गौरव पट है वो सभी ग्राम पंचायतों में बने हुए हैं और गौरव पट के ऊपर ग्राम की जो गौरव गाथाएं है ना वो है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है या गांव की कोई भी उपलब्धियां हैं वो होती है।
1: जी।
3: और एक होता है ग्राम विकास पट, विकास पट के ऊपर होते हैं गाँव के जो विकास कार्य करवाए जाते हैं उनकी लागत होती है, कार्य का नाम होता है और वर्ष जो
1: अंकित
2: होता है उसके
1: ऊपर। चलिए मान सकता हूँ कि हो सकता है कि मुझे इस विषय में जानकारी ज्यादा ना हो, इस कार्यक्रम के रहते हुए मुझे थोड़ी सी जानकारी हर दिन मिलती है, पर ये जरूर मैं मानता हूँ कि किसी भी गांव में अगर हम कोई कार्य करते हैं उसका डिस्प्ले होना चाहिए, चाहे उसका नाम ग्राम विकास पट हो चाहे ग्राम गौरव पट हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाहर से कोई व्यक्ति आए उसको खुशी हो कि इस गांव में इतने पैसे खर्च हुए हैं, इस योजना के अंतर्गत ये स्टेडियम बनाया गया, ये खेल का मैदान बनाया गया है या ये सफाई का काम किया गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो जब आप किसी गाँव में जाते हैं तो क्या आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं BDPO साहब?
3: जी देते हैं। और जो विकास कार्य होते हैं उनकी साइड के ऊपर भी एक डिस्प्ले किया जाता है बोर्ड लिख के, अभी से ये कार्य कौन सी स्कीम के तहत हुआ है, क्या लागत है और कार्य कहाँ से कहाँ तक है, वो उसकी फोटो अपलोड होती है आजकल जो पेमेंट वगैरह होती है कामों की उसके साथ।
1: जी जी, वीरेंद्र सर।
2: हाँ, मैं दो तीन चीजें थोड़ी सी क्लियर करता हूँ। एक, जैसा BDPO साहब ने कहा, जो ग्राम गौरव पट का कंसेप्ट है, ग्राम गौरव पट की अवधारणा ये है कि हर गांव में कुछ विशिष्ट उपलब्धियां होती हैं उस गांव की, कोई ऐतिहासिक पक्ष हो सकता है, कोई वहां के शहीद हुए हों, वहां के कोई बहुत बड़े अधिकारी हुए हों, कोई खिलाड़ी हुए हों जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया हो, तो हर गांव के अतीत से जुड़ी हुई गौरवपूर्ण बातें वो तो ग्राम गौरव पट पर होनी अपेक्षित है। जी, ये जो गौरव गाथा वाला पट, ग्राम गौरव पट है, ये ओम प्रकाश धनखड़ जी जब पंचायत मंत्री थे उस समय में ये अवधारणा आई थी और बहुत सारे अधिकांश गांव में बने हैं, बहुत जगह वो जब हम चर्चा करते हैं तो बात सामने आती है कि बहुत सारे गांव में उसकी संभाल अच्छे से नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जो भी विकास कार्य होता है ना भारत जी गांव में
1: जी,
2: उस विकास, मान लीजिए सड़क है, मान लीजिए कोई मार्केटिंग बोर्ड ने या जिला परिषद ने या पंचायत समिति ने कोई सड़क बनाई अपने खर्चे से, माने अपने फंड से, तो वो सड़क जहां से शुरू होती है जहां तक खत्म होती है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उस पर कितना खर्च आया है और उसका निर्माण किस ठेकेदार ने किया है, अपेक्षा ये है सरकार की कि ये एक पट पर वहां पर लिखा होना चाहिए। केवल खेत केवल के केवल और केवल सड़क की नहीं है ये बात, किसी भी सरकारी भवन के बारे में है, किसी भी सरकारी भवन यानी मान लीजिए स्टेडियम बनाए किसी गांव में, मेंबर पार्लियामेंट का एक होता है डेवलपमेंट फंड, MPLAD बोलते हैं उसको, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, उससे काम होते हैं। उसमें भी नियम है, सरकार के केंद्र के निर्देश हैं, MPLAD की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जिस सांसद की निधि से पैसा आया उसका भी नाम का उल्लेख हो और कितना पैसा लगा, कब बना, कब ये काम हुआ, उसका उल्लेख उसमें होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसपे आप और हम रोज चर्चा करते हैं, और जरा आज BDPO साहब हैं सामने, इनसे दो टूक बात करी जा सकती है, कि जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है वो गांव के विकास का सबसे बड़ा पैमाना है
3: जी।
2: आप स्थानीयकृत जो विकास लक्ष्य हैं उनके मामले में आपके किसी गांव ने कितने कदम आगे बढ़ाए वो अगर नापना है तो आपके पंचायत इंडेक्स से, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स से पता चलेगा, पाई से पता चलेगा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से। तो आप जिन दो खंडों के अधिकारी हैं उन दो खंडों में पाई का जो प्रचार है, पाई का जो डिस्प्ले है गांवों में, सार्वजनिक स्थान पर कहीं आपको ध्यान आता है किसी गांव में आप गए हो और वहां की पंचायत ने अपना पाई इंडेक्स वो जनता के सामने डिस्प्ले कर रखा हो, आपको ध्यान आ रहा है?
3: हाँ जी, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जो कार्य होते हैं ग्राम सभा में भी साल वाइज जो होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर बताए जाते हैं ग्राम वासियों को।
2: नहीं नहीं, मैं इनकम इंडेक्स की बात ही नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा, वो तो आप बताते हैं गांव वालों को। पाई को आपने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को सार्वजनिक स्थान पर डिस्प्ले करना है, ये भारत सरकार बार बार कह रही है आपको हमको, तो वो हरियाणा में अभी बहुत गंभीरता से विभाग ने लेना शुरू नहीं किया। मुझे लगता है कि पाई को लेकर थोड़ा सा और सतर्क सचेत होने की आवश्यकता है और हमें उस दिशा में काम करना चाहिए। सरपंच साहब अभी फिर मुझे लगता है हमारे साथ नहीं है, पाई को लेकर कल आपको कहां कहां जाएंगे ग्राम सभा में, आपने कहां का तय किया हुआ है वीडियो साहब? आपने कोई गांव तय किए जहां आप स्वयं रहेंगे?
3: हाँ मैं रहूंगा सर।
2: कोई गांव के नाम बता पाएंगे कौन से तय कर दिए अभी?
3: मैं माछरोली जो पंचायत है वहां रहूंगा।
2: माछरोली में रहेंगे, तो कृपा करके कल एक काम करिएगा, हमारे अनुरोध पे कर लीजिए कि माछरोली में ग्राम सभा जब हो तो ग्राम सभा में उस गांव के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत विकास सूचकांक की चर्चा हो, आप बताएं या कोई माथहत बताएंगे भाई थारे गांव की तरक्की का योदरिया फीता और ये स्तर है आपका, यहां खड़े हो, चौथी सीढ़ी पे खड़े हो, पांचवी पे खड़े हो, गड्ढे में पड़े हो, शिखर पे चढ़ गए, ये चीजें वहां में हो जाए। और फिर कल से ही शुरू कर दीजिए अगर संभव है तो, कल की ग्राम सभा के साथ ही माछरोली से शुरू करके पाई को डिस्प्ले करने का की व्यवस्था जरूर करेंगे, ताकि हर ग्रामवासी को, हर स्टेक होल्डर को, जिसको हम हितधारक कह सकते हैं या पणधारक कह सकते हैं, जिन जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं उनको इन सब चीजों का पता रहना चाहिए। प्रीतम जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या BDPO साहब से?
4: सर, मेरा BDPO साहब से एक सवाल है, क्योंकि पूरे पंचायत के कार्य देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। BDPO साहब, आज हर गांव के तो पता नहीं, मेरे गांव में जो रामबाग होता है वो पूरा पक्का कर दिया जाता है, क्योंकि जो वन की बात चली है और रामबाग के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। मैं औरों के कहते हैं, लगभग मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष में हर साल एक पेड़ लगाता हूं, और मेरे गांव में अब की बात तो पंचायत ने वो पक्का कर दिया गया है, पूरा जो रामबाग है, शमशान घाट है, उसको पक्का कर दिया गया है। अब उसको पेड़ लगाने के लिए वो टैल है जो बिछाई गई है, पत्थर वो निकाल के पेड़ लगाए जाएंगे। ये आप लोगों भी थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि ऐसे कार्य, क्योंकि जो ये चीजें हैं रामबाग वगैरह, ये सबके लिए होती है, यहाँ पेड़ लगाने के लिए होती है, हरियाली के लिए होती है, तो ऐसी चीजों को पक्का न करें, तो ये ऐसा मेरा आपसे सुझाव है।
2: आपका अनुभव क्या है?
3: जगह के ऊपर डिपेंड होता है।
2: आपके खंडों में भी ऐसा ही है क्या? जो ये शिवधाम योजना के तहत शमशान घाटों की मरम्मत हुई है, बढ़िया बनाने की हुआ
3: उस हाँ, रास्ते भी बनाए गए हैं, साइड भी है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। टाइलों का ऐसे है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है, किसी गांव में जगह कम है तो वो शायद कवर कर दिया होगा, कई जगह बड़ी काफी जगह होती है तो उसमें वृक्षारोपण काफी आसान है।
4: एक एक किला की जगह है, एक एक खेत बोलते हैं, पूरा एक किले की जगह है, उसको अब पंचायतों को काम नहीं मिलता तो काम करने के लिए जो कहा जाता है वो ऐसे काम देखते कि कहाँ काम हो जाए। तो आप, मेरा आपसे अनुरोध है, आपके उसके खंडी में भी कहीं कोई हो तो इसकी तरफ थोड़ा सा नजर रखें, क्योंकि गांव बड़े होते हैं, वहां लोग पेड़ लगा सकते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, और पहले बड़े बुजुर्ग तो हमेशा वहीं लगाते थे।
2: गुरविंदर जी, आपके मन में कुछ है इससे पहले कि भारत जी को मैं कहूं अगला सवाल पूछने के लिए?
1: नहीं, मेरे पास
2: भारत जी मुस्कुराना है थोड़ा सा,
1: मेरे पास कुछ कमेंट्स है वो पढ़ना चाह रहा हूं, मैं वही पढ़ रहा था।
2: चलो गोविंद जी से पहले कमेंट पढ़ दीजिए आप।
1: विकास बंसल जी लिख रहे हैं कि गांव फतेहाबाद से बिल्कुल जुड़ा हुआ शांतिप्रिय, साफ सुथरा और समृद्ध गांव बताया जाता है बरसीन, और हम पड़ोस में ही रहते हैं, कोई विवाद गांव का सुनने में नहीं आता है, इलाके के अच्छे गांव में इसकी गिनती होती है, पहली बात तो ये है। दूसरा वो लिखते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एवं पंचायत अधिकारी गांव के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यदि BDPO ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित की भावना से कार्य करे तो गांव का विकास तेजी से होगा। और भी साथ में लिखते हैं वो कि BDPO को समय समय पर गांव का दौरा करना चाहिए, ग्रामीणों की समस्याएं सुननी चाहिए और तथा उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, पंचायतों को नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। तो ये कमेंट थे विकास बंसल के, जो आपके मुरीद है, और पर हम विकास जी का स्वागत करते हैं, और ये जब लिखते हैं तो विस्तार में लिखते हैं तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम इनके शब्दों को इस कार्यक्रम में ले आए। जी वीरेंद्र सर।
2: प्रीतम जी ना गुरविंदर जी से पहले मेरे मन में भी एक सवाल आ गया। नीलम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी सहयोगी हैं यहाँ
1: जी
2: स्टेट पंचायत और सेंटर में। नीलम जी के मन में कोई सवाल होगा तो ये बाद में पूछेंगी। नीलम जी कहाँ आप चलती गाड़ी में हमारे साथ जुड़ गए, कहीं स्थिर होकर जुड़ा करिए। BDPO सर कल आप मशरौली जाओगे और ग्राम सभा है और विशेष ग्राम सभा है, लोगों की संख्या अच्छी हो, प्रतिभागिता अच्छी हो, इसके लिए क्या उपाय करते हैं ग्राम सभा जी? थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि मैं कल को मशरौली की ग्राम सभा वो NDC ग्राम सभा हो जाए, जिसमें क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था जो भारत सरकार के दो सचिवों ने संयुक्त रूप से आपको लोगों को लिखी है, इस चिट्ठी में इस बात पर जोर दिया गया है कि भाई जन भागीदारी के बिना आप ये वाले लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो जन भागीदारी बढ़े कल की ग्राम सभा में, इसके लिए आपने कोई आज विशेष नहीं है क्या? कम से कम जिस ग्राम सभा में आप रहे वहां मामला यूं लगे खिला खिला सा, भरा भरा सा, हरा हरा सा।
3: जी उसके लिए आज मुनादी होगी, शाम को होगी और दिन में करवा दी एक बार, और माइक होते हैं गांव में जैसे मंदिरों पर, वो उससे स्पीकर के, उसके माध्यम से भी, जो लाउड स्पीकर के माध्यम से सूचना दी जाती
2: है। चलिए बहुत बढ़िया, और मैं कल चाहूंगा कि आप मुझे भी छोटा मोटा वीडियो जरूर भेजें अपनी अपनी ग्राम सभा का। मशरौली का तो हमारा मान कायदे से लगना ही चाहिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन तो उसकी करनी है। भाई सरपंच साहब लौट आए हैं हमारी सभा में, वापस आ गए हैं, और बहुत भागदौड़ हो रही है, इनके फोन, इनका फोन न जाने कहाँ कहाँ भाग रहा है, आज ये हमारे साथ टिक के जुड़ नहीं पा रहे, ऐसे किसके फोन आने लग रहे हैं सरपंच साहब? केरोड़ा हो गया, शांति तो है गांव में?
0: फोन की तो नहीं है, नेटवर्क इशू है जी।
2: अच्छा चलिए, कल की ग्राम सभा को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करने वाले, आप भी बता दीजिए, फिर गुरविंदर जी का प्रश्न लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: ग्राम सभा के लिए या बुनियादी करवाएंगे जी, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे और स्वच्छ गांव और पर्यावरण स्वच्छ को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, लोगों से पेड़ पौधों की अपील करेंगे लगाओ।
2: आपके गांव की अगर सबसे बड़ी समस्या मुझे पूछनी हो आज की तारीख में, आपके गांव की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: सर कोई नहीं अभी तक चुनौती, एक सीवरेज लाइन की थी वो सीवरेज लाइन डल रही है।
2: एंडीगाम के मानस हो आप तो, एंडीगाम के प्रधान हो, मतलब ना कोई समस्या ना कोई चुनौती, जो सवाल है उनका सबका समाधान जो भी थी जी,
0: दूर की है जी, अब थोड़ी बहुत ही रहेगी। जैसे कम्युनिटी सेंटर की मांग है जी, हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर बना जाए और खेल ग्राउंड के लिए जगह छोटी है, उसकी चार दीवारी स्टेडियम बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव दे रखे हैं जी, वो जब भी ऊपर से फंड आएगा तो बनाने की कोशिश करें।
2: आपके विधायक कौन है?
0: विधायक तो जी कांग्रेस के बलवान सिंह दौलतपुरी हैं जी, और बीजेपी के पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, उनका सहयोग बहुत है जी दोनों का जी।
2: विधायकों के साथ तालमेल रखना ही चाहिए, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी संवाद रहना चाहिए सरपंच का, और सरकार की ओर से विकास कार्यों में कहीं पैसे की कमी तो इस सरकार ने आने नहीं दी, कहीं विधायक किसी भी पार्टी का हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट जब विकास कार्यों की घोषणाओं का मामला आता है तो फिर ये नहीं देखते हम कि भाई विधायक भारतीय जनता पार्टी का है या किसी और दल का। गुरविंदर जी का सवाल ले लेते हैं।
5: बिल्कुल साहब नमस्कार, मैं जैसे कि जो सूचना पट की बात चली थी, जब से हमारी ये ग्राम पंचायत विकास योजना बननी शुरू हुई है जीपीडीपी, उसमें एक जो स्पेशल ये भी किया गया है कि हर ग्राम पंचायत में एक पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि काफी पंचायतों में वो लगाते नहीं है, मतलब वो अगर लगे ना तो लोगों को जानकारी हो। और जो कल का पर्यावरण दिवस है, जैसे हमारे जहाँ एसटीआरटी में भी दयाल सिंह कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, तो अगर हम स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें, एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी के रूप में उनसे कोई कोई पिक्चर या उनका कोई सेटअप उनसे लिखवाएं कि पर्यावरण में क्या क्या रोल हो सकता है, आम जो जनसाधारण लोग हैं या स्टूडेंट हैं या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मतलब उस चीज को लेके वो भी अवेयर हों। जैसे आपके कल मसौली में आप जा रहे हैं तो वहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप जरूर उसमें शामिल कीजिएगा, तो उनमें से कोई वो पेंटिंग बना के लेके आए, कोई अपना जो क्यों बच्चों का आईक्यू हमारे से बहुत अलग होता है, क्यों वो उस चीज को झेल रहे हैं कि जैसे पहले उन्होंने तो इसी देखे हैं, पहले वो जो पेड़ थे वो नहीं देखे हैं, अगर हम उनको किसी प्रदर्शनी की वजह से उन चीजों को लेके आएंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा।
3: ये आज जो मीटिंग हुई थी डीसी मैम ने और एसडी मैम ने ली थी, तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी शामिल था और सभी को कल ग्राम सभा के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, स्वच्छता अभियान भी होगा और आगे बरसात का जो समय आएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, लोगों को भागीदार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा।
2: बहुत बढ़िया, शिक्षा विभाग को भी जोड़ा है। देखिए सरकार इस अभियान को महत्व कितना दे रही है भारत जी, इस बात से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार के दो दो मंत्रालयों ने हाथ मिलाकर इकट्ठे एक एडवाइजरी जारी की है, फिर सब ग्राम पंचायतों को दिल्ली से ही निर्देश नहीं आए, खाली केंद्र सरकार से निर्देश नहीं आए, राज्य सरकार की तरफ से भी सभी को ये कहा गया है कि वो इस काम को बहुत गंभीरता से लें, यानी जो ग्राम सभा है उसका आयोजन बहुत जिसे कहते हैं ना विद ऑन अ सीरियस है ना, उसका आयोजन किया जाए। इसका इसका एक प्रमाण ये भी है कि उपायुक्तों को भी स्वयं मैदान में उतरने के लिए कहा गया है, और झज्जर की जैसा बीडीपीओ साहब बता रहे हैं कि इनकी उपायुक्त ने केवल पंचायत के अधिकारियों से बात नहीं की, केवल पंचायत या ग्राम विकास के से जुड़े अधिकारियों से बात नहीं की, उन्होंने शिक्षा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके आज इस मामले में काम करने के लिए कहा है। देखते हैं कि कितना बेहतर काम कल हो पाता है और रिपोर्टिंग भी होगी ही निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम की, जैसा कि पहले से कहा गया है। विकास भाई आप सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट करके अपने आप को।
0: हाँ जी सर,
2: लाइब्रेरी बन गई आपके यहाँ?
0: हाँ जी लाइब्रेरी बनी हुई है जी।
2: कितने कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है उसमें?
0: 32 सीट है।
2: 32 आबादी कितनी है गांव की?
0: आबादी 2600 जी।
2: अच्छा गांव छोटा ही है, बहुत बड़ा गांव नहीं है। तो ये कब की बनी हुई है लाइब्रेरी आपके यहाँ?
0: लाइब्रेरी ये बनाई थी 2023 में जी।
2: 2023 में बनी। और एयर कंडीशन लगे हैं एसीज?
0: हाँ जी 2 एसी लगे हुए हैं जी।
2: और इसको संभालता कौन है?
0: गांव का ही लड़का है रवि, उसके अंडर कर रखे, उसको संभाल रखे।
2: नहीं इसको, इसका वेतन कौन देता है?
4: वीरेंद्र जी कॉल आ रही है।
1: जी जी कॉल आ रही है।
2: हेलो।
0: वेतन नहीं है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी।
2: चलिए श्रोता को सुन ले, फिर इस बात को थोड़ा सा और खोल कर बात करेंगे जी। हेलो भारत जी, आपके श्रोता कहाँ रह गए? हेलो
4: हेलो।
1: हाँ जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: आए भी और आए भी नहीं, यूं ही कहेंगे ना, आए भी और आए नहीं, घंटी बजी भी लेकिन श्रोता जुड़े नहीं।
1: जी सर।
2: कोई नेटवर्क का इशू रहा होगा। थोड़ा सा चित्र को साफ करिए, आपकी जो आपका जो गांव का पुस्तकालय है उसका प्रबंधन कौन करता है, उसका वेतन कहाँ से जाता है? विकास भाई आप तो म्यूट हैं, लेकिन कॉलर को सुन लेते हैं इस बीच में। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो।
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं? हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? स्वागत है आपका।
4: सर मैं राहुल बोल रहा हूँ। और
1: कहाँ से?
2: राहुल
4: सभी ना आपका मैं कार्यक्रम सुन रहा था
1: जी।
4: तभी जी जैसे कि रिसेंटली भाई जुड़े थे जिनसे आप लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा कुछ बातचीत चल रही थी
1: जी जी।
4: तो ऑब्जर्वेशन रही सर, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगा आपसे।
2: एक बार अपना नाम दोबारा बताइए, अपना गांव बताइए।
4: हाँ जी वैसे मेरा नाम तो सर वो राव राहुल सिंह, राहुल आप कह सकते हैं।
1: कहाँ से
4: राहुल? और मेरा गांव हुआ नांगल पठानी सर, कोसली के पास।
2: नानू पठानी जी।
4: नांगल पठानी सर, नांगल पठानी।
2: नांगल पठानी जी।
4: हाँ सर
2: बताइए।
4: और मैं आपके यहाँ पे चरखी दादरी में यहाँ पे मैं रहता हूँ सर
2: जी।
4: तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही, क्योंकि मेरी फील्ड जॉब है सर और मैं मतलब कि गांव गांव जाता रहता हूँ मैं, तो मैंने मेरे जो देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से काफी चीजें सुविधाएं दी हुई है, बट उस चीज को मतलब कि प्रॉपर रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा उस चीज को। अभी जैसे लाइब्रेरी को लेकर आप बात कर रहे थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लाइब्रेरी को ज्ञान केंद्र बोलते होंगे शायद।
2: ग्राम ज्ञान केंद्र कुछ और कंसेप्ट था, लेकिन वो लाइब्रेरी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं जी।
4: हाँ तो जो भी है सर वो, बट मैंने ये देखने को मिला है कि मैं काफी गांव में गया हूँ, वो सरकार ने सुविधा भी दी, बढ़ाया भी, पैसा भी लगाया, काफी अच्छी चीजें की, बट उनपे मतलब कि लोग लगा हुआ है सर, अभी वो ओपन ही नहीं हुई है। उसके सामने पता चल रहा जो दरवाजा है वो बिल्कुल परमानेंट जाम हो गया, उसके सामने जो एक गंदा कूड़ा है मतलब कि घास फूस है वो उगा हुआ है। तो इस जगह मतलब कि पैसा इन्वेस्ट करने का जो सरकार ने जो लगाया उसका क्या फायदा हुआ? मतलब कि इवन आपकी लाइब्रेरी की बात कर लेते सर, हम लाइब्रेरी को लेकर अगर बात करें तो देखने को मिलता है कि वहाँ पे या तो लाइब्रेरी के लोग लगा रहते हैं परमानेंटली, कोई इसको ओपन नहीं करता, और उस चीज को लेके से एक एक्सटेंशन प्रोग्राम होना चाहिए। मेरा तो मानना ही है, लोग बाग बच्चे जो भी है जो पढ़ने वाले हैं मैंने देखा है वो सिटीज में जाके पैसे 1000-2000 रुपए देते हैं, ठीक है, पर वो चीज अब गांव में मिल रही है, सुविधा मिल रही है,
6: तो उसके लिए क्यों ना एक स्टेप उठाया जाए, मेरा पूछना ये था सर।
2: चलिए इस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। एक बिल्कुल राहुल भाई सच्चाई यही है कि गांव के बच्चों को गांव में बैठकर पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वो जो पेड लाइब्रेरीज हैं, पेड प्राइवेट लाइब्रेरीज जो शहरों में जिला केंद्रों पे सब डिवीजन पर खुल गई थी, उन लाइब्रेरीज में जाके पैसे दे के पढ़ते थे। उस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह सिलसिला शुरू किया कि गांवों में हम पुस्तकालय बनाएंगे। बिजली कंपनियों को कहा सबसे पहले कि आप सरदार पटेल पुस्तकालय के नाम से लाइब्रेरीज बनाइए, पुस्तकालय बनाइए। पुस्तकालय बनने शुरू हुए, सैकड़ों की संख्या में वे पुस्तकालय बने। बाद में इस अभियान को थोड़ा बड़ा किया गया और तय किया गया कि हम कोशिश करेंगे क्रमवार ढंग से हरियाणा के हर गांव में हम अटल पुस्तकालय बनाएंगे, और उसका वो जो काम है वो जिला परिषदों के माध्यम से चल रहा है। बीडीपीओ साहब यहाँ हैं, इनके खंड में भी कई पुस्तकालय स्वीकृत हुए होंगे, कुछ बन के तैयार भी हो गए होंगे। हरियाणा के अब सैकड़ों गांवों में उनके अपने पुस्तकालय हैं। सरकार ने पैसे दे दिए, संसाधन दे दिए, बनवा दिए, लेकिन उनके संचालन का काम, कायदे से संचालन का काम अंततो गत्वा गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत को देखना है, और ग्राम पंचायतों के जो चौधरी कह लीजिए, ग्राम पंचायतों के संरक्षक कह लीजिए, वो बीडीपीओज हैं। तो बीडीपीओज की अपनी भूमिका है कि वो किस तरह से अपने खंड के अंदर आने वाले पुस्तकालयों को सजीव, जागरूक, चलायमान और बेहतरीन बनाए रखते हैं। जो आपने कहा ग्राम ज्ञान केंद्र, आपने जरूर कहीं ग्राम ज्ञान केंद्र पढ़ा होगा। पीडीपीओ साहब, आपके आपके खंड में कोई ग्राम ज्ञान केंद्र बनाए क्या?
3: हाँ, नॉलेज सेंटर हैं और वो बनाए गए थे। अब बाद में जैसे लाइब्रेरी का आया सरकार की तरफ से, तो जिन गांवों में बिल्डिंग नहीं थी या नॉलेज सेंटर थे या अन्य और कोई 600 वर्ग गज की कोई भी बिल्डिंग है, तो उसमें लाइब्रेरी खोल दी गई थी रेनोवेशन करके।
2: जो विलेज नॉलेज सेंटर है राहुल भाई, वो लाइब्रेरी नहीं थी। विलेज नॉलेज सेंटर को पुस्तकालय नहीं बनना था, वो तो उनका उपयोग नहीं हुआ इसलिए कुछ जगह लाइब्रेरी बन गई होंगी।
3: बिल्डिंग और बिल्डिंग नहीं होगी इसलिए वो बना दी।
2: हाँ, और राहुल अगर लाइन पर बने हुए हैं तो मैं इनसे ये कहूंगा, वो लाइन पर ना भी हो, रेडियो सुन रहे हो तो भी, अगर किसी विलेज नॉलेज सेंटर पर, ग्राम ज्ञान केंद्र पर ताला पड़ा हुआ है, आपने उसको देखा है तो किस गांव का है उसकी फोटो लेकर? हाँ जी,
6: एक तो मैंने देखा पिचोपा खुर्द के अंदर। हाँ, ये
2: आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर वहां की कोई फोटो उसकी जियो लोकेशन टैग करते हुए और गांव का नाम देते हुए भेजिएगा, वहां के संबंधित जो अधिकारी हैं उनको हम सतर्क करेंगे उसके बारे में।
6: ठीक है सर। दूसरा एक और चीज मेरा जो मतलब कि नॉलेज में, एक गांव है झिंझर, सरकी दादरी में पड़ता है, और देखने को मिला है कि वो शायद मे बी एज ए लाइब्रेरी, जितना मैंने वहां को देखा है वो लाइब्रेरी के रूप में बनाया था, पर आज वो जो हमारे कह सकते बड़े बुजुर्ग है ना, उनके लिए ताश खेलने का ज्यादा एक स्थान बन गया है। वहां पे आप देखेंगे कम से कम
2: ऐसा किसी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताइएगा कहाँ ऐसा हो रहा है और स्थिति को बदलेंगे। हमें राहुल जैसे निगेवान, राहुल जैसे सचेत सजग युवाओं की, ग्रामवासियों की आवश्यकता है, जो इस तरह की गलतियों को पकड़ें और हम लोगों के ध्यान में लेकर आए। हम बीडीपीओ साहब, गांव के सरपंच, सब मिलकर ऐसी चीजों को दुरुस्त करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद राहुल भाई, हमारे प्रोग्राम में कभी कभार ऐसे जुड़ा करो। 5:01 हो गए भारत जी,
1: जी सर।
2: लगता है कि सबको, सब मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आप हम सब की ओर से विदा ले लें अगले अगले अंक के लिए, यानी कल के लिए।
1: जी जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने समय निकाला, खास करके के बीडीपीओ बेरी और साथ में ग्राम पंचायत के जो सरपंच हमारे साथ विकास जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और शुक्रिया भी साथ में, क्योंकि उन्होंने आज गांव के बारे में बात की। कई बार हम आप लोगों से सीखते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि हम आपसे सवाल करें, और जैसे बीडीपीओ साहब से भी हमने कुछ प्रश्न किए। जब भी इस कार्यक्रम में हम आते हैं तो कुछ सीख के ही जाते हैं और हम कभी भी हारते नहीं हैं, हम जीत के ही जाते हैं इस शो से और कोशिश करते हैं कि लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। जैसे राहुल हमसे जुड़े थे, राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सजग लोग हमारे देश में बहुत उन लोगों की जरूरत है और इस कार्यक्रम में भी आप लोगों की बहुत बहुत जरूरत है। आप जरूर जुड़िएगा इस कार्यक्रम में और कल हम आप सभी लोगों से फिर भेंट करेंगे 4 PM। आप सभी को हमारी ओर से राम राम हरियाणा।
2: जी राम राम, सबको राम राम,
4: राम राम हरियाणा।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस शहजादे पंकज उदास जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है श्याम गजल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड के मशहूर लेखक आनंद बख्शी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और लेकर आई हूं सुनहरे पल का एक नया एपिसोड। आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो बॉलीवुड के दिल की धड़कन बन गए थे। एक शख्स जो अपने कलाम के जादू से हर दिल को छू गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर पहलू को अपने गीतों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्होंने बस लिखा ही नहीं, जिंदगी के जज्बात को महसूस किया और दुनिया तक पहुंचा दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मिट्टी से उठकर सितारे छूने के जज्बा, उसी का नाम है आनंद बख्शी। वो कलाम के सिपाही, जज्बात के सौदागर, जिन्होंने हर दिल की बात अपने गीतों में बयान की।

आनंद बख्शी का जन्म रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में 21 जुलाई 1930 को हुआ। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार भारत आ गया और दिल्ली में रहने लगा। उनकी मां उन्हें प्यार से नंद पुकारती थी और पिता उन्हें प्यार से अजीज या अजीजी और रिश्तेदार नंदो कहते थे। बख्शी परिवार चिट्टियां हिटिया मोहल्ला कुतुबुद्दीन रावलपिंडी में एक 3 मंजिला घर में रहता था। इस घर को दरोगा जी का घर या दरोगा जी की कोठी के नाम से जाना जाता था। नंद का नाम रावलपिंडी के उर्दू मीडियम और उसके बाद कैम्ब्रिज कॉलेज में लिखा दिया गया। उर्दू मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनका नाम जो आनंद प्रकाश था।

14 साल की उम्र में आनंद बख्शी कराची में रॉयल इंडियन नेवी में शामिल हो गई। वे 1944 में रॉयल इंडियन नेवी में कराची बंदरगाह पर बॉय के रूप पर भर्ती हुए और 5 अप्रैल 1946 तक वहां रहे। इसके बाद वो आर्मी में शामिल हुए। वो 2 अक्टूबर 1947 का दिन था जब भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की त्रासदी का शिकार ये परिवार रातों रात रिफ्यूजी की तरह भारत पहुंचा। बख्शी परिवार एक डकोटा विमान से रावलपिंडी से सुरक्षित दिल्ली आ गया, क्योंकि आनंद के बाबूजी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के साथ पंजाब की जेलों लाहौर और रावलपिंडी के इंचार्ज थे।

नंद की उम्र 17 बरस की थी जब 12 अप्रैल 1950 को वो मुंबई आ गए थे और उसी साल उन्होंने गायक और लिरिसिस्ट के तौर पर गाना और लिखना शुरू कर दिया। भारत पहुंचने के बाद वो भारतीय फौज में बतौर आनंद प्रकाश शामिल हो गए। जब 1947 से 1950 के बीच फौज में नौकरी करते हुए आनंद प्रकाश ने पहली बार कविताएं लिखना शुरू किया तो उन्होंने कविताओं के नीचे दस्तखत किए आनंद प्रकाश बख्शी। आनंद प्रकाश फिल्मों में बतौर गायक अपनी पहचान बनाने की हसरत रखते थे, पर दुनिया ने उनके लिखे गीतों को इस कदर पसंद किया कि वो एक मशहूर गीतकार बन गए। हालांकि उन्होंने अपने लिखे कई गीतों को आवाज भी दी। जगत मुसाफिर गाना, लगा है अनजाना और बागों में बहार आई गीत इन्हीं की आवाज में फिल्माया गया है।

1956 में आनंद प्रकाश बख्शी ने अपनी मर्जी से फौज की नौकरी छोड़ दी। अब उनकी आंखों में बस फिल्मी दुनिया में अपने नाम की पहचान कायम करने की एक जिद सी सवार हो चुकी थी। गीतकार बनने की इस जिद के साथ भूतपूर्व फौजी के रूप में उनके पास कैप्टन वर्मा की सिफारिश की चिट्ठी, करीब 60 कविताओं का संग्रह और उनके गुरु बिस्मिल सईदी के साथ के तौर पर एक मजबूत हौसला भी था। बख्शी साहब का इरादा पक्का था। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा, फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा, पर मैं खाली हाथ यहाँ से वापस घर नहीं लौटूंगा। उस वक्त तक उनकी शादी भी हो चुकी थी।

आनंद बख्शी मुंबई में काम की तलाश में आ तो गए, लेकिन यहाँ रहने के लिए उनके पास कोई मुकम्मल जगह नहीं थी, इसलिए सबसे पहले वे दादर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने दादर गेस्ट हाउस तुलसी पाइप रोड में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद वह खार पश्चिम के होटल एवरग्रीन में रहने लगे। इन दिनों वे सारा दिन बस गाने ही लिखते रहते थे। उनके आशियाने के आसपास कई उस वक्त के नामचीन संगीत कलाकारों के भी घर थे, जिसमें से सचिन देव बर्मन खार में रहते थे, जबकि बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनकी पत्नी उसी होटल एवरग्रीन में ही रहते थे। काम की तलाश में भटक रहे आनंद बख्शी अपनी कविताएं और गाने गाकर

आसपास के लोगों को अपनी कला से खुश करते थे। शब्दों के जादूगर आनंद बख्शी को माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद मिला था। यही वजह थी कि केवल मात्र 8 मिनट में सुपर हिट हुए गानों को लिख दिया करते थे। आनंद कभी लिरिसिस्ट बनना ही नहीं चाहते थे, दरअसल वो गायक बनने का सपना लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि उनकी मंजिल कहीं और ही थी। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और अपने शब्दों का जादू चलाकर करोड़ों लोगों का दिल जीता।

0: गीतकार एवं गायक आनंद बख्शी अपनी सफलता का श्रेय भगवान दादा को देते हैं। उनका इस बारे में कहना था कि जब मैं पहली बार पर्दे पर अपना नाम देखा तो खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। आज अगर मैं एक कामयाब गीतकार माना जाता हूं तो वो भगवान दादा की वजह से है। उन्हें अपना पहला ब्रेक भगवान दादा द्वारा अभिनीत ब्रिजमोहन की फिल्म भला आदमी 1958 में गीत लिखने से मिला। उन्हें 4 गानों के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में संगीत निर्देशक निसार बाजमी के लिए 4 गाने लिखे। इस फिल्म में उनका पहला गाना धरती के लाल ना कर इतना मलाल था, जिसे 9 नवंबर 1956 को ऑल इंडिया रेडियो इंटरव्यू में उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम गलती से बख्शी की जगह बख्शी लिख दिया गया और इस तरह से वह फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए आनंद बख्शी की जगह आनंद बख्शी हो गई।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाना।

आनंद बख्शी ने 1962 से लेकर 2002 तक करीब 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए तकरीबन 3300 से ज्यादा गाने लिखे। उनके गानों के बोल में जो जादू है वो आज भी लोगों के दिमाग पर चढ़ा हुआ है। आनंद बख्शी के गानों में भले ही खूब सादगी हो लेकिन वो असल जिंदगी में बहुत ही शरारती हुआ करते थे। एक दिन उन पर उनकी शरारत काफी भारी पड़ गई थी। आनंद ने इंडस्ट्री के मशहूर और बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया। हालांकि उनकी जोड़ी आरडी बर्मन के साथ खूब जमी। उन दोनों ने मिलकर कई शानदार गाने इस बॉलीवुड को दिए। फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ओम शांति ओम, आदमी मुसाफिर है, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, जैसे अनगिनत गीतों को इस जोड़ी ने मिलकर सजाया। आनंद बख्शी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म फेयर अवार्ड के 40 नॉमिनेशन मिले। वहीं 4 बार इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2000 में जी सेने अवार्ड, IIFA अवार्ड 2000 में मिले।

मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। ये संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा बख्शी जी का पहला गाना था और 29 जुलाई 1963 को रिकॉर्ड हुआ था। किशोर कुमार ने इसे अपने सबसे पसंदीदा गानों में शामिल किया था। पूरे देश में हिट हुई उनकी फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो 1965 में आई थी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर आनंद बख्शी की सुपरहिट फिल्में छाती चली गई। कुछ फिल्मों के नाम है फर्ज, राजा और रंक, तकदीर, जीने की राह। आराधना वो फिल्म है जिससे राजेश खन्ना के स्टारडम का रास्ता तैयार हुआ और उसके गीत भी आनंद बख्शी ने ही लिखे थे, जो सुपरहिट साबित हुए। आनंद बख्शी के लिरिक्स की नजाकत और खूबसूरती के चलते लोग उन्हें शब्दों का बाजीगर भी कहा करते थे। उन्होंने अपने 7 दशक के करियर में बॉलीवुड को करीब 4000 से अधिक गाने दिए। इन्हें लिखे गीतों के बोल इन्हें सरल और भावना प्रधान होते थे कि आम आदमी की रूह को छू लेते थे। हर मानवीय संवेदना के ऊपर अलग अंदाज के साथ इनके लिखे गीत सुनने को मिल जाते थे। यही वजह रही कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। ये उनके लिए लोगों का प्यार ही था जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा 41 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 4 बार के फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता रहे। आनंद बख्शी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गानों के जरिए वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। गायक बदलते गए और संगीतकार भी बदलते गए, लेकिन आनंद बख्शी ने अपने कलम का तिलिस्म बरकरार रखा।

एक के बाद एक हिट फिल्में आती चली गई। इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी फिल्मी दुनिया में बतौरी गीतकार एक बड़ा नाम बन चुके थे। इन्होंने रोशन, एसडी बर्मन, एस मोहिंदर और नौशाद और आने वाले 45 सालों में तकरीबन 95 संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने कुल 303 फिल्में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, 99 फिल्में राहुल देव बर्मन के साथ, 34 फिल्में कल्याण जी आनंद जी के साथ और 14 फिल्में सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर फिल्मों में जमकर अपनी पारी खेली। आनंद बख्शी अपने आखिरी समय में दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। दरअसल उन्हें स्मोकिंग की आदत थी जो उनकी मौत की वजह बनी। आनंद बख्शी ने अपना आखिरी गाना फरवरी 2002 में लिखा। ये गाना निर्देशक सुभाष गई और संगीतकार अनु मलिक के लिए था। ये गाना था बुले शाह तेरे इश्क नचाया। उस वक्त वो बुखार में थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उन्हें 3-3 कंबल उड़ाए गए थे। कमजोरी और बुखार की वजह से वो कांप रहे थे। अस्थमा की वजह से उनकी सांस तेज तेज चल रही थी। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए अनगिनत बेहतरीन गाने जिनके जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।

तो दोस्तों, आज का ये सफर हमारे साथ यहीं तक का था। जैसे आनंद बख्शी के लिखे हर लफ्ज में एक कहानी छिपी होती थी, वैसे ही हमारी ये छोटी सी मुलाकात भी एक याद बनकर आपके दिल में रह जाएगी। आपने हमारे साथ ये पल बिताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे उन्होंने लिखा था, जिंदगी की राहों में कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 9। पेश किया आरजे किन्नी ने और आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन व एडिट किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सभी दोस्तों का हमारी इस खुशनुमा महफिल में खुश आमदीद। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कुछ तुम्हारे वादे टूट गए, कुछ हमारे ख्वाब बिखर गए और कुछ तुम्हारी कोशिशें भी नाकाम हुई। हम तो सजदों में मसरूफ रहे और फिर भी न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के। मोहब्बतें मुफलिसी के दौर में पास रहती, गर तुम दूर न चले जाते और हम यूं ही तन्हा पत्थरों के साथ नीला न हो पाते। हमारे तुम्हारे बीच इन फासलों के दरमियां ये जलता सूरज कब तक हमारी निगहबानी।

दिलों में जलन है। मेरे रास्ते की हर रह गुजर क्यों इतनी कठिन है। मांगी थी रोशनी पर अंधेरों ने दामन थाम लिया। चाहा था फूल मेरे आंगन में खिले पर कांटों से दोस्ती हो गई। कई बार इस तरह के सिलसिले जारी रहे और हम उफ तक न कर सके। शायद मेरा वादा था जिंदगी से जो निभाता आ रहा हूं मैं जन्मों जन्मों से।

खिल उठती थी तुम्हारी सुनहरी मुस्कानों से, और न जाने ये अब्र क्यों बेवजह परेशान होकर बरसने की कोशिश करता रहा, जबकि मेरे उस दौर की धूप में मैं अपने ही साए से अक्सर लिपटता रहा, यह सोचकर कि ढलते सूरज की आखिरी किरण शायद मेरे आने वाले कल को संवारने में मदद कर सके। जानता हूं ख्वाब पल भर में बिखरते हैं और हकीकत डराती है, पर हां यकीन है फिर वो सुबह होगी जो हमें तुमसे रूबरू कराएगी, तुमसे नई पहचान कराएगी और रिश्तों की अहमियत समझाएगी, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहटों में मैं अक्सर अपने तस्वीर को महसूस करता।

की रास्ती, मोहब्बत की राहें, और हम तलाशते हैं अपने आने वाले कल को, वो कल जिसमें हमारी जिंदगियां रोशन हो सके, ताकि हम जीने सुकून से। जाने अनजाने कई बार समय ने करवट ली, शायद हम तुम्हारे आगोश में पनाह ले सके, क्योंकि तुम जो तकती रहती है इन प्यार के रास्तों को, और तुम्हारी बाहें मुंतजिर रहती हैं मुझे अपनी ओर लेने के लिए।

क्या तुम महसूस करते हो इन सन्नाटों को चीर दी तुम्हारी सिसकियां हमारे वजूद को दस्तक देती है। हमें माजी के शबिस्तानों से रूबरू कराती है। तुम्हारे दिए हुए जख्मों को हरा करने की कोशिश करती है। बेशक क्यों न मौसम बदलते रहे पर आज भी बेताब है ये चिनार के पत्ते तुम्हारे पैरों को छूने के लिए। यहाँ की ये मासूम हवाएं मुंतजर हैं तुम्हारे बदन से लिपटने के लिए, क्योंकि तुम हमारी इस खामोश शब के हर पहर में जिंदा हो जावेदा हो।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है, मेरे साये की तरह। कुछ तुम्हारे ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब है। हमारे भी हाथ उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में, जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साये के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह हमारी रहगुजर में शामिल तो होता है, पर रूबरू

जी आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:12। सभी आदरणीय श्रोताओं को रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर समय हो चला है अब आज के प्रसारण को यहीं पर विराम देने का। सुबह से लेकर अब तक हमारा और आपका साथ बेहद खूबसूरत रहा, ढेरों बातें हुई, नगमे सजे और यादों के कारवां चलते रहे। उम्मीद है कि आज का हर एक पल आपके लिए आनंदमयी रहा होगा। कल सुबह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी फ्रीक्वेंसी पर। जाने से पहले आपको कुछ जानकारी देंगे कल के दिवस के बारे में। कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। आज हमारी धरती, हमारा पानी और हमारी हवा हमसे एक गुहार लगा रही है। अगर आज हम सचेत नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ी को एक धुंधला और स्वच्छ भविष्य देखना पड़ेगा। आइए इस पर्यावरण दिवस पर रेडियो विदस्ता के साथ मिलकर हम सब एक पक्का संकल्प लें। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला बिंदु है, एक पौधा जरूर लगाएं। सिर्फ लगाएं ही नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल भी करें ताकि वो जीवित रहे। दूसरा, प्लास्टिक को कहें ना। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें। जल और ऊर्जा की बचत, पानी की एक एक बूंद और बिजली की हर एक यूनिट को बचाएं। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण दे जाएं। यह था आज का विषय, और उम्मीद करते हैं कि कल इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। और कल राम राम हरियाणा कार्यक्रम में, जो रेडियो पर लाइव होता है 4 से 5 बजे, हमारे साथ होंगे डॉक्टर के ग्रीन मैन ऑफ अंबाला, पर्यावरण के जानने माने नाम, जिनको ग्रीन मैन ऑफ अंबाला के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जोगिंदर सिंह। वो हमारे साथ होंगी 4 से 5। अगर आप भी कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो आप भी उस लाइव शो में उनसे सवाल कर सकते हैं। तो आइए आज के इस खूबसूरत सफर को विराम देते हैं इसी विशेष विदाई शायरी के साथ। हर दिन की तरह पंक्तियां यूं हैं, सुरों की मौज बहती है, दिलों का हर दर्द मिटता है। सुरों की मौज बहती है, दिलों का हर दर्द मिटता है, मोहब्बत की सदा बनकर गूंजता है रेडियो विदस्ता। आज की इस महफिल से अब विदा लेने का वक्त है। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर, ये हमारी आपका रब्त है। तो ये पंक्तियां आप सभी के नाम, और साथ में आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, कल 11:30 बजे दिन में, यानी सुबह 11:30 बजे रेडियो वितस्ता पर एक लाइव शो होगा जिसका शीर्षक होगा भगवद गीता जीवन का आधार। हमारे साथ कल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, डॉक्टर आशु गोयल, जो कि इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है गीता परिवार के, और वो हमारे साथ होंगे इस शो में। और गीता के बारे में हम जानेंगे, गीता जो हमारा ग्रंथ है वो हमारे जीवन को कैसे साकार कर सकता है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगी डॉक्टर आशु गोयल, जो इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है गीता परिवार के, और श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, प्रभारी उत्तरांचल गीता परिवार, और साथ में भास्कर दास होंगे जो संयोजक जम्मू कश्मीर गीता परिवार के हैं। तो ये लाइव शो होगा हमारे फेसबुक पेज पर और साथ में रेडियो वितस्ता पर भी। तो ये जानकारी आपको देनी थी, और साथ में आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 5 जून 2026 शुक्रवार को आप सुनेंगे हमारी शुरुआत कार्यक्रम में 5:58 पर वंदे मातरम और प्रकाश प्रवाह, 6 बजे भक्ति संगीत, 7 बजे रेट्रो हिट्स, और 8:30 बजे रंगमंच की ओर का एपिसोड 4 पेश करेंगे मानव मेहरा, 9:30 बजे सुनहरे पल साहित्य लुधियानवी पर तैयार किया गया कार्यक्रम, और 10:10 पर नारी एक दर्पण एपिसोड 3। 11:30 बजे आप सुनेंगे जरूर कार्यक्रम भगवत गीता जीवन का आधार।
6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे रेट्रो हिट्स और 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम भी कुछ बात करो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त और होस्ट और हम सफर को दीजिए इजाजत। अब सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। कल सुबह 5:58 पर फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।